मीडियम ही 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शकसमत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6 बजने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरूआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति गीत।
1: सबको कराए अमृतपान संतों ने, सुर के ही द्वारा जग को दिया है दिव्य ज्ञान। स्वर संगीत और काव्य में हृदय वीणा के तार झंकृत करने की अद्भुत और महान शक्ति है। कबीरदास, तुलसी, सूर, रसखान, रैदास और मीराबाई ने

अपने भावभीने भजनों द्वारा भक्ति भाव की ऐसी रसवर्षा की है जिसमें भीख कर प्राणी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री राधा रास बिहारी के श्री चरणों में अपना मन लगा सकता है तथा त्रिविध तापों से जर्जरित अंतःकरण के विविध मल को जलाकर उसे स्वर्ण की भांति परिष्कृत और शुद्ध बना सकता है और तब होती है अलौकिक आनंद की अनुभूति। भजन गाने वालों ने इन अक्षरों और शब्दों में अपनी अंतरात्मा की आवाज तलाश कर ली है।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म घर से ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी टूटेंगे नहीं।

0: दोस्तों, कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं।
1: कह दो ना,
2: क्या
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
2: मुझे शर्म आती है।
1: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you.
3: Yeah!

अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर

0: रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है।

0: ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था

0: मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day stay.

जीवन को जीने के लिए जितनी सांस की जरूरत होती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतनी ही आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसी सुविचार के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।

बिल्कुल श्रोता हूँ, इसी संदेश के साथ आपका फेवरेट प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार जो है शुरू हो चुका है, जिसमें आज के दिन से जुड़ी बेहद ही खास खास बातें हम जानेंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको बेहतरीन से गीत।

0: लेकिन उससे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं चंद्रा राम पटेल और प्रकाश पवार।
0: कंट्रोल रूम से हैं सुनील जयपाल।
1: प्राइमरी चैनल पर उद्घोषक पुलाश दास।
0: एफएम चैनल पर है सोनिया देवड़ा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड़ का।
0: और इन सभी के साथ सूत्रधार के रूप में मैं हूं सोफिया खान
1: और मैं मीता मुल्तानी। दोस्तों, नया दिन नए सवेरे, इसी के साथ सुनते हैं गीत नए नवेले।

0: दोस्तों, सच्ची सफलता निरंतर प्रयास और कभी हार न मानने के दृढ़ संकल्प से ही मिलती है। इसी बात को हम एक प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, इसलिए वह हमेशा ज्ञान और सफलता के नए रास्ते खोजता रहता था। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान गुरु के पास जाने का फैसला किया। वह व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार छोटी मोटी असफलताएं मुझे रोक लेती हैं। कृपया मुझे सफलता का रहस्य तो बताइए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल सुबह नदी के किनारे बताऊंगा। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंच गया। गुरुदेव भी वहां आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, चलो हम नदी के बीचों बीच चलते हैं। दोनों नदी में उतर गए। जैसे ही पानी उनके गले तक पहुंचा, अचानक गुरुदेव ने उस व्यक्ति का सिर पानी के अंदर डुबो दिया। फिर वह व्यक्ति हैरान रह गया मित्रों, और उसने बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन गुरुदेव ने उसे कसकर पकड़े रखा। जब कुछ सेकंड बाद वह व्यक्ति तड़फने लगा और उसका दम घुटने लगा, तब गुरुदेव ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही उस व्यक्ति ने लंबी सांस ली और हांफने लगा। गुरुदेव ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हवा की गुरुदेव। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा, एक पैशन के साथ चाहोगे, जितनी बुरी तरह से तुम्हें पानी के अंदर हवा चाहिए थी, तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगी।
1: बिल्कुल, और इस कहानी से ये सीख मिलती है श्रोताओं कि जब हमारे लक्ष्यों को हासिल करने की हमें भूख होती है ऑक्सीजन की तरह, और जब वो हमारे जीवन मृत्यु का सवाल बन जाती है, तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।

तुम्हारे। दोस्तों, लाइफ में भी हम एक चीज के बिना अधूरे होते हैं और वो होता है हमारा भरोसा। बिल्कुल भरोसा कोई कमजोरी नहीं, ये तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमारी भी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी लोग आएंगे श्रोताओं, कुछ आपका भरोसा तोड़ेंगे, कुछ आपका भरोसा बनाएंगे। रिश्तों में कभी खटास भी आएगी, लेकिन आप निराश मत होइए। वहां से शुरुआत करना खुद पर और वक्त पर भरोसा रखने की, क्योंकि भरोसा जीत का जरूरी होता है।

श्रोताओं, जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। तो प्रेरणा लेनी है तो आप सभी लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठ जाती हैं।

श्रोताओं कहते हैं कि चिंता करने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, आज की भी और कल की भी, और आज का जो सुकून है वो भी चला जाता है। इसलिए चिंता आप कम करें, क्योंकि जो काम होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कहें, और जो नहीं है उसके लिए लगातार प्रयास करें।

दोस्तों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि दो ही चीज़ें ऐसी है जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक तो मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। तो आप हमेशा इन्हें बांटते रहिए और ये हमेशा बढ़ती ही रहेंगी।

श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं। नोट, अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का। फिर आपसे मुलाकात होगी 9:10 पर।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वे रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा

0: कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारी करौली संवाददाता।
1: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीकी तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: अभी जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौ सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए।

0: निरीक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में चार चार वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायुसेना ने नई दिल्ली में अपनी एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
2: और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्यों है आज का दिन इतिहास में खास। तो श्रोताओं, आज ही के दिन 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक में खोला गया था पहला एटीएम। इसका आइडिया जॉन शेफर्ड बैरन को एक चॉकलेट वेंडिंग मशीन देखकर आया था। उन्होंने इस तरह की 6 मशीनें बनाई थी और इन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया भी था। सबसे पहले मशीन लंदन के इनफील्ड में बार्कलेज बैंक में लगाई और इस मशीन से सबसे पहले ब्रिटिश कॉमेडी एक्टर रैग वार्ने ने पैसे निकाले थे।
1: 1839 में सिख साम्राज्य के संस्थापक और शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था आज ही के दिन।
2: और आज ही के दिन श्रोताओं, 1957 में कई जगह आपने लिखे बात करें तो कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो आज के दिन साल 1957 में इसकी वैज्ञानिक पुष्टि हुई थी।
1: साल 1954 में सोवियत संघ ने मॉस्को के पास ओवनिस्क में दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की थी आज ही के दिन।
2: साल 2005 दिन आज का, और ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था आज ही के दिन।
1: साल 1964 दिन था आज का, यानी 27 जून को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया था आज के दिन।

0: और श्रोताओं, अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काम की बात की। तो काम की बात ये है श्रोताओं कि गर्मी की छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, या कहें ख़त्म हो ही गई है। तो इस गर्मी की छुट्टियां जो बची है एक दिन की, यानी कल संडे है, तो इसमें पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, आज के काम की बात जो है हमारी इसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से पहले आप बच्चों की दिनचर्या को धीरे धीरे सामान्य करें। उन्हें समय पर उठाना, समय पर सुलाना शुरू करें, उनका गृह कार्य पूरा करवाएं और सभी आवश्यक स्टेशनरी, किताबें, यूनिफॉर्म पहले से ही तैयार या व्यवस्थित कर लें। छुट्टियों के बाद स्कूल जाने की तैयारी को सुचारू और तनाव मुक्त बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे छुट्टियों में बच्चों को के सोने की आदत बिल्कुल बदल जाती है, वे लंबी देर तक सोए रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले ही बच्चों को हर दिन 15-20 मिनट पहले उठाने और जल्दी सुलाने की आदत डालें। इसी तरह छुट्टियों के दौरान खोए या खराब हुए पेन, पेंसिल, नोटबुक, पानी की बोतलों को चेक करें। बच्चों के साथ मिलकर नया सामान व्यवस्थित करें और स्कूल की खरीदारी को उनके लिए रोमांचक बनाएं।
0: बिल्कुल, और स्कूल खुलने की जो सुबह भाग दौड़ होती है उससे बचने के लिए श्रोताओं, आप एक रात पहले ही यूनिफॉर्म और पॉलिश किए हुए जूते जो हैं वो एक जगह निकाल कर रख सकते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों का सारा काम पूरा हो चुका हो ताकि आखिरी समय में बच्चे तनाव ना आए। इसीलिए जो ये प्रिपरेशन है ये ज़रूर करनी चाहिए आप सभी को। और बता दें कि छुट्टियों में जो जंक फूड और मीठी स्नैक्स की बजाय आप पौष्टिक और संतुलित आहार की भी एक प्लानिंग बनाएं, जैसे स्कूल जो खुल रहे हैं उस समय उनके बच्चों में जो है वो भरपूर ऊर्जा बनी रहे, और आपको भी एक टाइम टेबल बनाने में जल्दबाजी ना हो, क्योंकि सुबह सुबह जो है टिफ़िन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बनाएं क्या। तो पौष्टिक चीज़ों का एक टाइम टेबल आप बना सकते हैं ताकि आपके लिए आगे आसानी हो सके। और इसी छुट्टियों के दौरान बच्चों ने जो पढ़ा है उससे थोड़ा दोहरा लें।
1: इससे स्कूल शुरू होने पर उन्हें कोई भी काम करना है, जो कोई विषय सीखना है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को यूज्ड टू हो जाना चाहिए स्कूल खुलने से पहले। तो आज से ही आप लोग स्कूल खुलने से पहले की इन तैयारी को शुरू कर दीजिए और फिर देखिए बच्चे कितनी मस्ती से बम बम बोले बोलते हुए स्कूल जाएंगे।

0: इसी के साथ श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं खेल समाचारों की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से मात देकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और वह लगातार 10वीं बार नॉकआउट में पहुंच गया है। इसी के साथ जर्मनी का 11 मैचों का विजयी रथ अब थम गया, इक्वाडोर ने उसे 2-1 से हरा दिया है। आज के मुकाबले में केप वर्डे का मुकाबला सऊदी अरब से सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था, उरेग्वे का स्पेन से और मिस्र का ईरान से सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और क्रोएशिया का मुकाबला घाना से होगा।
1: और श्रोताओं, बात करें हॉकी की तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में खेले गए प्रो हॉकी लीग के मुकाबले में पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। ये लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रो लीग का दूसरा मैच था और दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से भी शिकस्त दी थी।
0: इसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में आयरलैंड ने पहले T20 में वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को 34 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। यह आयरिश टीम की भारत के खिलाफ 12 मैचों में पहली जीत रही। साथ ही बैडमिंटन में भारत के 18 वर्षीय युवा शटलर रौनक चौहान ने US ओपन में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी को हरा दिया है।

0: श्रोताओं, आज है 27 जून और आज के दिन हम मनाते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है छोटे उद्यमों को सशक्त बनाना, महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देना और डिजिटल परिवर्तन और नवाचार पर जोर देना। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 31.1% और देश के कुल निर्यात में लगभग 48.6% का योगदान देता है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आज का दिन उन लोगों को समर्पित है और उन हुनरमंद हाथों को समर्पित है जो चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्पित दिन के, जिन्हें हम हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। और आज इसी MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम फोन आउट के माध्यम से जुड़ेंगे पूनम राठौर जी से, जो कि जनरल मैनेजर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर जोधपुर में। हेलो
2: हेलो
1: हेलो पूनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार में।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो आज MSME डे है और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं और इस क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है मैम कि जो MSME सेक्टर है उसको सबसे ज्यादा, ये जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है,
2: जी बिल्कुल
1: लेकिन जो
2: सो।
1: आज के दौर में AI और डिजिटल तकनीक आई है, ये उन व्यापारियों के लिए एक अवसर के तौर पर हम देखें या एक चुनौती के रूप में?
2: जैसे आप आज जानते हैं कि आज AI का दौर है, डिजिटल युग जिसको हम कहते हैं।
1: बिल्कुल
2: तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखें तो अगर दोनों पहलुओं से हम देख सकते हैं ये चुनौती।

0: चुनौती भी है और अवसर भी है। इसमें जो उद्योग समय के साथ खुद को बदलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, पर जो बचाव से बचेंगे उनके लिए कठिनाई होगी। अगर आप एआई को अवसर के रूप में देखें तो जो भी छोटे उद्योग हैं वो उसमें एआई का उपयोग करके अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विसेज, नए मार्केट तक पहुंचने के लिए एआई एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। बट जो तो मेरा मानना ये है कि एआई है वो इंसान की जगह नहीं लेगा, बल्कि एआई का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो आगे निकलेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए एमएसएमई को अगर इस दौर में आगे बढ़ना है तो इस नई तकनीकी को अपनाने से डरे नहीं, बल्कि उसे अपने व्यवसाय का हिस्सा बनाने की जरूरत है, रेदर देन कि इसको एक चुनौती की तरह लें।
1: बिल्कुल, अगर ये इसका सही यूज होगा तो ये काम की ही बात है।
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल। और जब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर की संबंधित ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका फायदा हर छोटे और नए व्यापारी को अनिवार्य रूप से उठाना चाहिए, तो ऐसी कौन सी योजनाएं आप अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो?
0: आज की दौर में मैम एमएसएमई एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान देता है, एंड इसी को देखते हुए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि व्यवसायों के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए अपनाई जा रही हैं। तो उसमें मैं कुछ योजनाओं का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। पर जैसे मैं अगर केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का नाम लूं तो जिसमें है पीएमईजीपी, जिसे हम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके माध्यम से मार्जिन मनी जो सब्सिडीज है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना हो। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ भी जो स्कीम इस सरकार के द्वारा लाई गई है वो है विश्वकर्मा युवा उद्यमिती योजना है, ट्रेड सेक्टर के लिए आरटीपीपी योजना चल रही है, एमएसएमई पॉलिसी जो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर है उसकी कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स इस पॉलिसी के थ्रू दिए जाते हैं, चाहे वो मार्केट असिस्टेंस हो, चाहे मार्जिन मनी सब्सिडी हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं या डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट और सब्सिडी के रूप में उनको मिलता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स हैं जो कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सब इस योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल। और जब छोटे उद्योगों की शुरुआत की जाती है मैम, तो उन्हें लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं?
0: मैं ये बात बिल्कुल सही है कि जब छोटे उद्योग शुरुआत करते हैं तो हम लोग भी इस चीज को फेस करते हैं, क्योंकि जो डीआईसी है वो आपको सब्सिडी और अनुदान देने के लिए आपको एलिजिबल करता है, बट आपको लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो बैंक्स अपनी पूरी डिटेल स्टडी करके वो करते हैं। तो ये सही बात है कि बैंक अक्सर अनुभव हो या फिर आपके गारंटी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी कमी के कारण बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये ध्यान में आया है कि जब भी कोई एप्लीकेंट या व्यवसायी है वो अपनी रिसर्च में कमी रखता है, अपने दस्तावेजों में जब कमी रखता है तो वो एक शंका उत्पन्न करता है बैंक में। बट अगर कोई व्यवसायी वाकई में जानकार है और कहीं उसने काम किया है और अनुभवी है और बैंक को ये गारंटी रहती है और बैंक सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये अपना लोन है वो अच्छे से उसको रिइम्बर्स कर पाएंगे, तो वो वाकई में ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती है। पर कई बार हमने ये देखा है कि व्यवसाय पहले जानकारी से पहले ही अपने उस उद्योग जो लगाना चाहता है उसके रिसर्च से पहले ही वो ये कोशिश करता है कि उसको वो लोन मिल जाए। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो उनकी बारीकियों को बहुत ज्यादा समझें, उसके जानकार बने, उन सभी दस्तावेजों का आप नॉलेज लें कि जो बैंक में लोन लेने के लिए जरूरत है। अगर बिकॉज अभी मनी इज नॉट द इशू, आपको पैसा व्यवसाय करने के लिए मिल जाएगा। आज का जो सबसे मुख्य एसेट होता है किसी व्यवसाय को चलाने का वो होता है नॉलेज। अगर आपको सही नॉलेज है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका उद्योग

0: है, उसकी बारीकियों के बारे में आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिनाइयां आपको आएंगी।
1: बिल्कुल, यानी कि दिक्कतें हैं लेकिन उनका सामना भी करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके क्या उपाय हो सकते हैं इस सेक्टर में?
0: इसमें और प्रॉब्लम्स में मैं यही कहूंगी कि जैसे कई बार जो अक्सर हम लोगों ने योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान देखा है कि जो स्पेशली मैं लोन के लिए कहूंगी, तो इसमें है कि लोगों को ये लगता है कि अगर सरकारी योजना है तो हमें उसका जो लाभ है वो कई बार वो लोन लेते हैं और वो किसी और उसमें यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की आप चीजें भी ना करें, मैं संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, बिकॉज जिस काम के लिए आप उस लोन को ले रहे हैं उसका उपयोग उसी में करें। दूसरी जो इश्यू आता है वो अवेयरनेस का आता है। लोग जो कि आपके मिडल मैन होते हैं या फिर किसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि इस तरीके की छूट आपको मिल रही है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एंड भोले लोग होते हैं वो अपनी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कभी कुछ हो, आप कोई उद्योग लगाना चाहें, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक बार आपको जाना चाहिए। वहां पे आपको जानकारी देने के लिए वहाँ स्पेशल डेडिकेटेड सेल्स बनाई हुई हैं, तो आप पहले जानकारी लें। बिना जानकारी के आप कोई भी चीज शुरू नहीं करें। अगर आप जानकारी बिना अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो वो फिर कठिनाइयों की तरफ और ज्यादा, जो कठिनाइयां नॉर्मली आनी चाहिए उनसे भी ज्यादा वो बढ़ जाती हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही संदेश है कि आप पहले सरकारी ऑफिसेज में आप ये पूरी जानकारी लें कि किस टाइप से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी समस्याएं आने वाली हैं आपके पर्टिकुलरली आपके उद्योग को लेके, उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप जरूर लें।
1: यानी कि क्षेत्र में आने के लिए जो है आपको पहले जागरूक भी होना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ताकि जो ये दिक्कतें हैं तमाम तरह की उनसे आपका सामना ना हो।
0: जी
1: बिल्कुल, और सरकार भी ऐसी योजनाएं चला ही रही है जिनसे छोटे छोटे उद्योगों को जो है, व्यापारियों को है, लाभ पहुंच रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो एक आखिरी सवाल ये है मैम आपसे कि जो युवा खुद का नया स्टार्टअप या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहा है आज के दिन, तो उन्हें इस दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उनके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि कभी भी छोटी शुरुआत करने से कभी मत डरिए। कोई भी जो बड़ा उद्योग होता है वो एक छोटे विचार से शुरू होता है। मैंने अपने सर्विस के दौरान कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक सच्ची लगन, योजनाओं का उपयोग करके, सही जानकारी के साथ में, वो एक लेबर थे किसी यूनिट में और आज वो आज खुद एक एक्सपोर्टर और बड़े उद्यमी हैं। तो उनका मेन यही था कि वो कभी उस चीज से डरे नहीं और उन्होंने छोटी शुरुआत करी और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं।
1: मतलब
0: आज
1: डर
0: हम
1: के आगे
0: देखें,
1: जीत है।
0: बिल्कुल डर के आगे जीत है, और आज हम आज का दौर देखें तो आज भारत है वो उद्यमिता का एक स्वर्णिम दौर देख रहा है। चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, नई तकनीकें हो, सब में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो
1: मतलब कदम
0: अगर हम
1: उठाने
0: नौ
1: पड़ेंगे।
0: बिल्कुल हम अगर कोई नौकरी तलाशने के बजाय अगर रोजगार को देने वाले का संकल्प लें, तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होगी। जिस बेरोजगारी को जिससे हम लड़ना चाह रहे हैं उसका समाधान इसी में ही है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने।
1: बिल्कुल, तो पूनम राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया।
0: थैंक यू सो
1: शुक्रिया, आप
0: मच,
1: हमसे जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी पूनम राठौर जी से, जो कि जनरल मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर जोधपुर में। एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर हमने उनसे बातचीत की, और इस इंटरव्यू के प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड़ का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं, आज है शनिवार और शनिवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है शनिवार की रेसिपी। गर्मियों में तेज धूप और लू से बचने के लिए एक अचूक उपाय हमें कहा जाता है और वो है इमली और गुड़ का शरबत। तो आज हम आपको पिलाने जा रहे हैं गुड़ और इमली का शरबत। यह शरीर को लू से बचाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में बेहद मददगार होता है। मित्रों, सबसे पहले इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम गुड़, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/2 कप पुदीना के पत्ते। सबसे पहले इसको बनाने के लिए 3-4 घंटे हम इमली को भिगो देंगे और उसे फिर अच्छे से मसल कर छान लेंगे। उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें गुड़, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और पुदीने के पत्तों को पीस कर डालेंगे। अगर ये सब ढंग से मिक्स नहीं होते हैं तो एक बार मिक्सर में इसको चला लेंगे और उसके बाद बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तेज गर्मी और उमस अक्सर पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है, तो ये जो शरबत है ये आपको बेहद ही ताजगी देगा। इमली में मौजूद टार्ट्रिक एसिड और फाइबर पेट को साफ रखने और कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। इसी तरह मित्रों, गुड़ पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है जिससे खाना जल्दी पचता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। तो बस बनाइए आप भी गुड़ और इमली का शरबत।

0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन मना रही है जानी मानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, जिन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी और उड़न परी के उपनामों से भी जाना जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं पीटी उषा की। आज ही के दिन यानी 27 जून 1964 में इनका जन्म हुआ। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक उन्होंने 1982 के नई दिल्ली के एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक के रूप में जीता था। बात करें 1986 की तो सियोल के एशियाई खेलों में भी इतिहास रचते हुए 200 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में कुल 4 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे। और बात करें उनके करियर के सबसे यादगार पल की श्रोताओं, तो 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में उन्होंने ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय एथलीट बनी थी।
1: इसी के साथ श्रोताओं, आज हम जयंती मना रहे हैं जानी मानी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर की, जिनका जन्म 27 जून 1919 में हुआ था। इन्होंने उस दौर में नृत्य का प्रशिक्षण लिया जब महिलाओं के नृत्य करने को समाज में उचित नहीं माना जाता था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। साल 2012 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 24 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया।
0: और आज हम जन्मदिन जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं तमिल भाषा के सुविख्यात साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार, नाटककार अकीलन जी को। आज के दिन 27 जून 1982 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था।
1: साथ ही श्रोताओं, आज हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक नितिन मुकेश को, जिनका आज जन्मदिन है। 27 जून 1950 को जन्मे नितिन मुकेश ने कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए। नितिन मुकेश ने बॉलीवुड के कई संगीतकारों जैसे बप्पी लहरी, खय्याम, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बेहतरीन काम किया। फिल्मी गीतों के अलावा नितिन मुकेश अपने सुमधुर भजनों के लिए भी जाने जाते हैं। इनके लोकप्रिय गीतों की बात करें तो उसमें क्रांति फिल्म का जिंदगी का न टूटे लड़ी, सो गया ये जहां, फिल्म तेजाब, माय नेम इज लखन, फिल्म राम लखन जैसे कई सारे गीत हैं। अपनी सादगी और सुरीली आवाज के दम पर संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपनी अलग पहचान बनाई है नितिन मुकेश ने। तो सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये प्यारा सा नूरी फिल्म का गीत।

0: सेम मानेकशॉ को, जिन्हें फील्ड मार्शल सेम बहादुर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा के साथ की।
1: और साल 1969 की श्रोताओं बात करें तो ये भारतीय सेना के 8वें सेना अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए युद्ध को जीता था। देश के लिए विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत के लिए कई अहम जंगों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी।

श्रोताओं, पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद करते हैं अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले कुशल सैनिक

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जब वो खां को।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गुलाम अली को।

0: चश्मा लगता है, बाल भी लगते हैं, दांत भी लगते हैं, और आजकल घुटने भी लगते हैं।
1: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हमने लिया है पड़ोसन फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ किशोर कुमार की थी, बोल राजेंद्र कृष्ण के, और धुन से सजाया आरडी बर्मन ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत अब्दुल्ला फिल्म से। ये धुन आरडी बर्मन की, बोल लिखे आनंद बख्शी ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

दीवार फिल्म का ये दो गाना अभी आपने सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत रॉकी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सागर फिल्म से, आवाज़ें एसपी बाला सुब्रमण्यम की है और उनका साथ दे रही हैं आशा भोसले, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन से सजाया आरडी बर्मन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, कटी पतंग फिल्म से। इसे भी संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और आवाज किशोर कुमार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हीरा पन्ना, यह है फिल्म का नाम। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन से सजाया RD बर्मन ने।

हीरा पन्ना फिल्म के इस दो गाना के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शक्ति फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन से सजाया आर डी बर्मन ने।

आपकी कसम जी हाँ, यह फिल्म का नाम। आइए सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, बोल के आनंद बख्शी ने और धुन से सजाया आरडी बर्मन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

ये आवाज़ है अमित कुमार की, बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन से सजाए आर डी बर्मन ने, और फिल्म का नाम तेरी कसम।

शिवाजी चट्टोपाध्याय की ये आवाज़ थी। बोल लिखे जावेद अख्तर ने और धुन से सजाया आर डी बर्मन ने। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुने लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में सबसे पहली रचना चंपा मेथी के स्वर में।

ये स्वर थे बनारसी लाल झोरी के। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत की आखिरी रचना आइए सुनते हैं कालू राम भिकारनिया के स्वर में।

0: इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले बादशाह के स्वर में ये रचना।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत कैलाश खैर के स्वर में।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

अभी ये गीत अभी आपने सुना जोजो की आवाज़ में। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में अगली रचना कुणाल गांजावाला के स्वर में।

कैलाश खेर के स्वर में ये रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं आखिरी रचना सुगम संगीत कार्यक्रम की अदनान सामी के स्वर में।

0: इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान किए। उन्होंने रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए गए। इस उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का पानी अगले 3-4 महीनों में जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृत 4 अतिरिक्त जलाशयों में से फलसू जलाशय में पानी भरने की शुरुआत होने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के बाद अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए 29,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से जारी वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अब तक किसी भी एक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोग को 20,24,000 आवेदन मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं और 316 साक्षात्कार आयोजित कर विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए 2,538 युवाओं का चयन किया था। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विभिन्न जिलों में अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिन के इस अभियान के दौरान पहले दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज झुंझुनू और जैसलमेर में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। झुंझुनू के CMHO डॉ छोटेलाल गुर्जर ने शहीद पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के लिए 1,551 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में भी गड़ीसर चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेशल्स विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमीनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत में आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता डॉक्टर पूनम एम गुर्जर से, दिनेश राणेजा की बातचीत।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया खेती बाड़ी रा कामकाज आपा करे जा, साथ साथ आजकल किसान भाई चावे है के भाई कम लागत रे महीने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके, जैविक तकनीक से खेती करे, किसान भाई खेती रे महीने नवाचार करे, साथ प्राकृतिक खेती री भी अबार टाइम में बहुत जरूरत हो की है। खेत बचाओ अभियान रे तहत आज आपने जानकारी दिलावा उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा पोषण सुरक्षा। कार्यक्रम में आज पधारिया है डॉक्टर पूनम कालस, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विस्तार काजरी जोधपुर। पूनम जी राम राम।
1: राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम।
0: पूनम जी ओजी को खेत बचाओ अभियान चल रही है भारत सरकार का निशू 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक ओ प्रोग्राम चलेला, तो हमें आप माने किसान भाई ने बताओ के भाई ओज को उर्वरकों को संतुलित उपयोग है उनके द्वारा किन तरह पोषण जी की सुरक्षा आवे सके, तो सगला सु पहला बात आवे के पोषण सुरक्षा कई है और आभार भगत मैंने इंडी जी की जरूरत है क्यों पड़ी।
1: मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ हमें पोषण सुरक्षा पे भी ध्यान देना है। अभी जब हम असंतुलित उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध रसायनों का उपयोग, हम उत्पादन को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हम पोषण तत्वों की कमी हमारे आहार में निरंतर कम होती जा रही है।
0: हाँ?
1: तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी देशों में है। और मैं आपको वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताना चाहूँ तो उसमें 354 मिलियन टन उत्पादन रहा, परंतु जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई गई, जिससे कि हमारे पोषण सुरक्षा में एक चुनौती हमारे लिए अभी इस वर्तमान समय में है।
0: सही बात बताई सा पूनम जी आप, और किसान भाई चावे है, किसान भाई सोच है कि भाई मैं खेत मैंने खेती करनी चाहूँ वाह होनी चाहिए, इन वास्ते किसान भाई कहीं क्रिया करे के रासायनिक उर्वरकों रो प्रयोग करे, कीटनाशकों रो बीज को प्रयोग है वो कर रहा है, कुल मिलान बात आ है कि अंधाधुंध जी को उपयोग है वो खेती मैंने वेरियो है, मानव स्वास्थ्य माते ए जी का रासायनिक उर्वरक है, ए जी का कीटनाशक है, इनारो कई प्रभाव पड़िया करे।
1: जो असंतुलित और अंधाधुंध हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं उससे रसायनों के अवशेष हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में और अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। और आप देखो कि भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर, श्वास संबंधी बीमारियां, हार्मोनल असंतुलन, लीवर, किडनी, अनेक समस्याएं हर एक प्राणी के अभी आपको हर घर में देखने को मिलेंगी।
0: हाँ?
1: तो ये अत्यधिक जो हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं और उससे मृदा की जो मिट्टी है हमारी उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है और खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
0: कुल मिलान बात है कि जिसका किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, आप ये कम करें और साथ ही जो नवाचार रूप में जैव उर्वरक है, जैविक खाद है, इनरो उपयोग खेती बाड़ी में करे, तो किन तरह से पोषण सुरक्षा रे महीने ए योगदान दे सके, खासतौर से जैव उर्वरक और जैविक खाद।
1: बिल्कुल, जैविक खाद और जो आपा बिन कैसका की गोबर की खाद, उसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट या केचो की खाद, जो मिट्टी में जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी मात्रा बढ़ाती है।
0: हाँ?
1: जिससे कि मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और उसपे पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है। इससे फसलों एवं सब्जियों में उत्पादकता और पोषण गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। साथ ही जो

0: सैनिक रूरों पर जो हम निर्भर हो रहे हैं उनका भी हमारा जोखिम है वो कम होगा और हमें सुरक्षित पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध होगा जो कि हमारी पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
1: अबारे बगतर मैंने किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जी का जैव उर्वरक है जैविक खाद है इनरो उपयोग करे तो जिकी भी फसल वे किसान भाई है आगे जिमा करा काजा तो भात भात्री जी की बीमारियां है उनसे भी बचाव वे सके
0: जी।
1: तो और जी को संतुलित उर्वरक जी को उपयोग है इनरो की परसेंटेज है
0: वो परसेंटेज आपनो जो अपने मृदा का स्वास्थ्य कार्ड होता है
1: हाँ
0: मृदा सोइल हेल्थ कार्ड उसके आधार पे उसके जो रिकमेंडेशन है उनके अनुसार ही हमें उर्वरकों को डालना है। जरूरी नहीं है कि हम अधिक डालें या कम डालें, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता है या नहीं है उसके अनुसार ही हमें जो रिकमेंडेशन है तभी हमें वो डालना है।
1: सही कहे ऐसा और हमें बात आवे कि भाई ऐसा किसान भाई करनी चाहे कटु कोई जानकारी प्राप्त हुए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जी को है इन कहानी सु इन दिशा मैंने किसा किसा जी का प्रयास है वे किसान भाई वास्ते करी जिया है
0: जी बिल्कुल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की दिशा में भी अनेक प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगी 11 मई 2026 को ICMR और ICAR द्वारा संयुक्त रूप से सेहत एक राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य है कि बायो फोर्टिफाइड फसलें एकीकृत कृषि प्रणालियों और वन हेल्थ पे काम करेंगे
1: हाँ?
0: जिसमें ICAR द्वारा विकसित 200 से अधिक बायो फोर्टिफाइड जैव संवर्धित फसलों की जो किस्में हैं उनको हम ICMR के साथ मिलकर उनका क्लिनिकल ट्रायल वैलिडेशन करेंगे जिससे कि कृषि पोषण को हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ेंगे।
1: तो इनरो कोई प्रमुख उद्देश्य भी है
0: जी बिल्कुल। ये जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें और ये अभियान के माध्यम से भी हम यही किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें पोषण जो हमारे आहार के माध्यम से हमें मिलता है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए ही उर्वरकों का उपयोग करना है।
1: और जो बात आवे के किसान भाई ने आज जानकारी मिली है तो हमें जो किसान भाई चाहे कि भाई जी की फसल लेवे तो उन्हें जी की किस्म है वे उन्नत होवे और भात भातरा जी का मायने पौष्टिकता सु पोषक जी का तत्व है एवं या करे जैव संवर्धित फसलरी किस्म कहीं है और इंडो जी को महत्व है ओ कहीं हो या करे
0: जी मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जैव संवर्धित फसलें होती हैं वो एक उन्नत किस्म की फसलें होती हैं जिनमें आयरन जिंक और अन्य जो विटामिन से पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं सामान्य फसलों की तुलना में। ICAR द्वारा विकसित 200 से अधिक जैव संवर्धित किस्में जैसे मैं आपको बताना चाहूँ जैसे बाजरे यहाँ होता है बाजरे की HSB 299 एक
1: हाँ
0: बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है जिसमें आयरन और जिंक दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिससे कि महिलाओं में बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है जैसे एनीमिया हम बोलते हैं रक्त अल्पता तो उसमें ये सुधार के रूप में काम करेंगे।
1: और इन माध्यमों जिको है के खेत से ले थाली तक जिको
0: जी
1: पोषण है और सुरक्षा ने मजबूत कर सके हैं
0: बिल्कुल।
1: काजरी कानी पोषण सुरक्षा दिशा महीने किसा किसा जी का प्रयास है अबारे भगत में वेरिया है
0: काजरी द्वारा भी अनेक ऐसी तकनीकें विकसित की गई हैं जो कि पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। काजरी कृषि विज्ञान द्वारा ही एक वर्षा जल संरक्षण आधारित रसायन मुक्त पोषण वाटिका का मॉडल डेवलप किया। इसके लिए हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया खेतों पे भी हमने लगाया महिला किसानों को ट्रेनिंग दी। इसके साथ साथ काजरी में जैविक खेती प्राकृतिक खेती समन्वित कृषि प्रणाली के अनेक मॉडल बागवानी इसके साथ साथ पशुधन के लिए पौष्टिक चारा उत्पादन और उत्पादन के बाद जो कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण पर भी हम अनेक विषयों पे कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं और अनेक जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं जिससे कि पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और किसान महिलाओं और किसान भाइयों में जागरूकता भी बढ़े।
1: सही बात बती साहब भात भातरा जी का समृद्ध जी की कृषि प्रणाली है मॉडल है बागवानी है किसान भाई करे है और साथ क्या वह ऐसा कि खेती रे साथ जी को पशुपालन है वो किसान रे वास्ते बहुत सही कुया करे खेती सु देखो चारो मिल जा और पशुआ सु जी की गोबर है वह मिल जा तो वह जी की गोबर है खेता में किसान भाई काम में लेवे दोनों जी को लाभ है वो भी मिल जाया करे हमें पूनम जी हालता हालता किसान भाई ने आप रो कई संदेश है कई बोलाउन है
0: किसान भाइयों को मैं इस खेत बचाओ अभियान के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमारे फसलें भी पौष्टिक होंगी और फसलें पौष्टिक होगी तो ही हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ परिवार के साथ ही हम समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें।
1: ओ आप रो संदेश है किसान भाई वास्ते
0: जी।

0: पूनम कालस जी, आप कार्यक्रम में पधारिया और किसान भाई ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा पोषण सुरक्षा विषय माते आप जानकारी दे रही, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
1: राम राम, धन्यवाद।
0: कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरा वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 MHz पर और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 KHz पर। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नारी वाटिका में। और आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगी अपनी दो सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: लता परिहार। और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: सखियों, आप सुन रहे हैं नारी वाटिका कार्यक्रम, जो कि आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है और जहां हम रोज लेकर आते हैं जीवन से जुड़े ऐसे विषय जो हमें कुछ नया सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में सीखने, आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। कभी कभी छोटे प्रयास हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं तो कभी नई शुरुआत हमें नई मंजिलों की ओर लेकर जाती है, और कभी हमारे भीतर छिपी क्षमताएं हमें सफलता के नए आयाम दिखाती है ना पूर्णिमा?
1: हाँ, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और देश के विकास से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर सफर पर होगा बहुत बहुत सारा ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ हम चलेंगे इस पूरे प्रोग्राम में। और शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के एक प्यारे से गीत के साथ।

0: पूर्णिमा, सचमुच प्यार जिंदगी को कितना बदल देता है ना। और जिंदगी में प्यार तभी बहुत अच्छा लगता है जब आप वाकई में अपने साथ, अपने समाज के साथ, घर परिवार के साथ आप जुड़े रहते हैं और आप में कुछ करने का जज्बा हो।
1: जी
0: और जब वही कुछ हम जब करते हैं और उससे हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में एक जब नाम रोशन होता है, तो वो जो पूरे भारत का जो प्यार मिलता है ना, वो उसका कहना ही क्या होता है।
1: जब खुद की पहचान बनती है तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा। और जैसे कि भारत गांव और छोटे उद्योगों का देश है हमारा, और घरेलू उद्योग न केवल रोजगार के अवसर हमें प्रदान करते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारी परंपराओं और स्थानीय कलाओं को भी जीवित रखते हैं। पूर्णिमा, आज पता है कई परिवार में घर बैठे ही कई लोग अपने हुनर से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। और सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने आपकी जो घर की रसोई है, बरामदा है, या एक छोटी सी कार्यशाला एक बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री का रूप ले सकती है?
1: जी हाँ, आज के अगर हम बात करें ना, तो ये जो छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग हैं, वो छोटे बड़े बिजनेस जो कि हम घर से शुरू करके न केवल अपनी आमदनी का साधन बना सकते हैं, बल्कि उसे एक समाज में एक रोजगार का एक नया आयाम भी दे सकते हैं। और ना लता, ये जो भारत के घरेलू उद्योग हैं, इनका इतिहास भी बहुत पुराना है। हम जब छोटे थे तो हमारी जो दादी नानी थी, उनके ज़माने में भी घरों में तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो बनाए जाते थे। और आज हम इन्हीं को बिजनेस के बारे में उनको डेवलप कर सकते हैं, और इसके बारे में हम अपने सखियों को बताएंगे और जानेंगे कि कौन कौन से उत्पाद हम घर पे बना सकते हैं। क्योंकि ये जो घरेलू उत्पाद है ना, वो बनाने में आज उन उत्पादों को अपने खुद के देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पहचान मिल रही है।
0: तभी तो हम कह सकते हैं मेड इन इंडिया, होम मेड, हाथ का बना, है ना। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पर सुनाते हैं सखियों को ही प्यारा सा गीत।

0: सखियों, ऐसा हर किसी का सपना होता है कि वो अपने हुनर से अपनी पहचान बनाए, और जब वो पहचान बनाते हैं तो वो काफ़ी, जब वो सफल होते हैं तो उनकी पहचान उनका हुनर बोलता है। तो ऐसी ही एक फ़ोन आउट के माध्यम से हम जुड़ने जा रहे हैं द केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी से। वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने हुनर से सिर्फ अपना शौक नहीं बल्कि अपनी एक नई पहचान बनाई, और उनसे बातचीत की है लता परिहार ने।
1: सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अब तक के जीवन में जो बचपन से लेके आप बड़े होने तक कुछ चरित्र, कुछ कैरेक्टर ऐसे आपके जेहन में जरूर कहानियों के माध्यम से रहे होंगे, जैसे बारबी डॉल, आपका मिकी माउस, आपका टॉम एंड जेरी, और कोई बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारा सा कोई गुलदस्ता या आपकी पसंदीदा किताब, और आपने सोचा कि काश मैं उसे जीवित जीवंत रूप में महसूस कर सकूं या मैं उसे बना सकूं? तो हाँ सखियों, बिल्कुल आप बना भी सकती हैं, उसे महसूस भी कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उसे खा भी सकती।

0: सकती हैं, बहुत स्वाद लेकर जो भी फ्लेवर में आपको पसंद है उस फ्लेवर में लेके आप खा सकती हैं। तो आज ऐसी ही बातों से और ऐसे ही चरित्र को कैसे आप बना सकते हैं, तो हमारे बीच में है केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी, जो ऐसे ही आपके काल्पनिक जो भी आपके चरित्र हैं जिनको आपने कभी पसंद किया हो उनको केक के माध्यम से आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सखियो, आज फोन आउट के माध्यम से हमारे बीच में है केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी जी। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारी वाटिका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच लता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए, और मैं सभी श्रोताओं को नमस्ते बोलना चाहूंगी।
0: जी जी भावना जी, आप संक्षिप्त में आप अपना परिचय हमारे सभी श्रोताओं के साथ, हमारी सखियों के साथ आप शेयर कर सकती हैं।
1: ठीक है मैम, मेरा नाम भावना चंदवानी है और मैं जोधपुर से ही हूँ, और मैं घर से ही मैं एक छोटा सा अपना केक स्टूडियो चला रही हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भावना जी, ये काम आपने कब से स्टार्ट किया?
1: ये काम मैंने लॉकडाउन से शुरू किया। जैसे कि मेरी कुकिंग स्किल वैसे ही अच्छी थी मेरी मम्मी के कारण, तो और मैं बेकिंग भी अच्छी खासी कर लेती थी, तो उस टाइम सारे बेकरीज बंद थी, तो लोगों ने केक लेना शुरू किया। और उस दौरान जैसे ज्यादा काम कुछ भी नहीं चल रहा था, तो कई महिलाओं ने और कई लड़कियों ने मेरे से ये बेकिंग स्किल्स भी सीखी थी, तो इस तरह से मेरा काम लॉकडाउन में शुरू हुआ।
0: ओके भावना जी, ये केक के फील्ड में आना और इस फील्ड में ही काम करना, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था या आपका ये पैशन कैसे बना?
1: इसके लिए अगर मैं मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानूं तो वो मेरी बड़ी बहन है मोनिका पारवानी,
0: जी
1: उन्होंने मुझे बेकिंग सिखाई थी
0: जी
1: और मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। तो यस, मोनिका दीदी वही मेरी इंस्पिरेशन है।
0: ओके। तो इसके द्वारा आपने मतलब अब तक क्या क्या इस, क्योंकि देखो हर काम जब हम करते हैं तो इट्स नॉट दैट आपको वन डे सक्सेस मिल जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सखियों को अपने उन संघर्षों की भी एक थोड़ी से संक्षिप्त में बताएं ताकि वो इससे प्रेरित हो सके।
1: लता जी, चैलेंजेस तो खूब आए शुरुआती दौर में। जैसे कि मैं सब पहले खुद करती थी, जैसे बेकिंग करना, पैकेजिंग करना, ए टू जेड काम मैं खुद करती थी। फिर मुझे समझ में आया कि ये काम सब खुद से तो नहीं हो सकता। फिर मैंने थोड़ा सा टीम को बढ़ाया, जिनको मैंने सिखाया उन्हीं को मैंने अपने टीम में शामिल किया। और चैलेंज तो बहुत था क्योंकि घर को और बेकिंग को एक साथ हैंडल करना वो बहुत चैलेंज था, पर मेरे हस्बैंड ने और मेरी सासू माँ ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके बिना मैं ये इस मुकाम पे तो आज नहीं होती, अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो।
0: बहुत सही कहा आपने भावना जी, क्योंकि कोई भी काम जब खासकर जब हम घर से शुरू करते हैं तो एक महिला के लिए घर के साथ साथ अपने काम को अपने पैशन को पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ा एक हिम्मत का काम होता है, और उसमें अगर परिवार वालों का साथ मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: हाँ, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
0: जी, तो इसका मतलब हम क्या माने कि आपका परिवार आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है?
1: हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड, मेरा फैमिली, मेरा ससुराल, वो मेरी बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती।
0: तो आप वाकई में उन बहुत सारी महिलाओं में से बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला और
1: बिल्कुल
0: उन्होंने आपके काम की काबिलियत को और आपके पैशन को समझा, और आज यही एक वजह है कि वो आपके काम की एक रीढ़ की हड्डी बने हैं, और जिस वजह से आज आपका नाम लगभग में मुझे लगता है कि काफी मीडिया में काफी जगह लोगों के दिलों पर आप का और आपके केक का स्वाद जो है मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो लोगों के दिलों में है।
1: बिल्कुल
0: भावना जी, इस फील्ड में मतलब इस काम के द्वारा आपने मतलब क्या क्या इनोवेशंस किए, मतलब क्योंकि देखिए केक तो रूटीन में सब बनाते हैं पर
1: मैंने
0: आपका
1: सिर्फ
0: स्पेशलाइजेशन क्या है?
1: जैसे मेरा अगर एक्सपर्टीज बोले तो मेरा केक्स में मेरी बहुत एक्सपर्टीज है, स्पेशली जैसे फर्स्ट बर्थडे होते हैं, वेडिंग केक्स होते हैं, एंगेजमेंट

0: हैं, जैसे 5 से 6 टायर के केक भी हम बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 5 से 6 मंजिल के केक हम बनाते हैं तो हम हाफ के जी का केक नहीं बनाते, हम आधा किलो का भी केक लोगों को बना के देते हैं।
1: ओके यानी जिसकी जैसी नीड रिक्वायरमेंट है.
0: हाँ बिल्कुल, जिसको जैसी जरूरत है हम वैसा उनको काम करके देते हैं।
1: आजकल भावना जी कस्टमाइज केक का बहुत ज्यादा चलन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे पहले अगर हम बेकरीज पे जाते थे तो वो बिल्कुल जो केक काउंटर में लगे हुए होते हैं वही लोग लेते थे, पर अभी
1: जी
0: लोगों को है कि मेरे को ये डिजाइन का केक चाहिए, मुझे ये फ्लेवर का केक चाहिए, तो उसके लिए होम बेकर इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको जो फ्लेवर का केक चाहिए, जो डिजाइन का केक चाहिए, हम उनको वो बना के देते हैं, और उन लोगों को भी पता है कि इनके पास केक इतने नहीं रहते हैं रेडी, तो वो हम उनको उनके अकॉर्डिंग और बिल्कुल फ्रेश केक बनाना बना के देना चाहते हैं, ताकि हमारे कस्टमर भी बिल्कुल फ्रेश चीज कंज्यूम करें।
1: क्या बात है. मतलब घर का बना हुआ शुद्ध सा, मतलब हाइजीन को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा
0: मेंटेन
1: आप.
0: करना, हाँ बिल्कुल, वो हमारी प्रायोरिटी होती है।
1: जी. अब तक का कोई एक ऐसा केक जिसमें आपको बहुत बनाने में चैलेंज आया हो?
0: ऐसे बहुत खूब केक हैं जो बनाते हुए हमको बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, क्योंकि जैसे ऐसे केक हमको खुद भी वेन्यू पे लेके जाने पड़ते हैं, उधर उसको सेट भी करना पड़ता है, तो
1: अच्छा
0: उसके
1: अच्छा
0: लिए हम हाँ उसके लिए हमको बैकअप भी लेके चलना पड़ता है कि बाय चांस अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी भी करना पड़ेगा, तो
1: क्या
0: हमको
1: बात
0: हमारी
1: है.
0: टीम के साथ जाना। तो सबसे बड़ा केक अभी तक मैंने बनाया है वो है 25 किलो का, वो मैंने मेरी एक स्टूडेंट मुस्कान के लिए ही बनाया था उसकी शादी में, तो वो
1: 25
0: केक
1: किलो
0: अब
1: का?
0: यस 25 किलो
1: अरे
0: का केक बनाया था, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उसको बनाने में हमको 2.5 दिन लग गए थे, मैं और मेरी 4 स्टाफ ने, हमने 4 दिन में जाके उसको कंप्लीट किया, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे 2 टीम मेंबर्स हमने खुद कार में जाके वो केक उधर असेंबल किया, तो दैट वॉज अ मेमोरेबल केक फॉर मी टिल टूडे।
1: क्या बात है, बहुत खूब. अच्छा भावना जी एक बताइए, काम के दौरान कई बार क्या होता है कि फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, आपके कस्टमर्स को भी मैनेज करना पड़ता है, तो ये तालमेल आप कैसे बैठाती हैं?
0: जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर मैं शांत रह के अपने काम पे फोकस करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करती हूँ, और मैं टीम वर्क में भी पूरा विश्वास करती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली सपोर्ट के बिना ये कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, मेरी स्ट्रेंथ वही है कि फैमिली भी सपोर्ट मुझे पूरा है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे पूरा है, तो इसीलिए ये काम स्मूथली चल रहा है।
1: भावना जी ये स्किल सीखने के लिए क्या आपको बहुत, जो भी गेस्ट आपके आते हैं या कस्टमर्स आते हैं या जो भी सीखना चाहते हैं, तो उनको क्या किसी तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है?
0: नहीं, बिल्कुल भी उनको कोई भी तरह का क्वालिफिकेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। इवन मेरे से लता जी बहुत ऐसे बच्चियों ने केक सीखा है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है,
1: अच्छा
0: तो उनको बेसिक पढ़ाई भी नहीं आती, पर स्टिल वो ये काम करके मेरे उन लोगों को मैंने मेरी टीम में ही इंक्लूड कर लिया है,
1: अरे
0: तो
1: वो
0: बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको हाईली एजुकेशन की जरूरत है, नहीं इसमें इतना वो नहीं है, पर मेरी इच्छा ये थी कि वो जो बच्चियां हैं पर वो झाड़ू पोछे जैसा मतलब बिल्कुल बेसिक काम नहीं करके वो अपनी स्किल्स को पहचाने और उसको पॉलिश करके कुछ अच्छा करें, तो मेरा यही था कि इनको सिर्फ झाड़ू पोछे बिल्कुल छोटी मोटी हेल्प है वो नहीं करना है, उनको कुछ अच्छा सिखाना है, इतना स्कोप है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स बना के सेल कर रहे हैं, कुछ
1: क्या बात
0: बच्चे
1: है.
0: हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम बना के सेल कर रहे हैं, उनके पास और चीजों का टाइम ही नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने कितनी गृहणियों को कितनी बच्चियों को सपोर्ट करके और उनको मैंने स्वावलंबी बनाया।
1: बहुत खूब. वाकई में भावना जी सही शिक्षा और सही शिक्षा सही गुरु मिल जाना, जो आपके अंदरूनी जो आपके स्किल्स है उसको निखार कर लाए और उसको पैरों पे खड़ा कर दे, इससे बढ़िया एक, मतलब हम किसी को, वो कहते ना, हेल्प नहीं कर सकते. आपने उनको इस काबिल बना दिया कि वो स्वयं तो स्वावलंबी बनी है, साथ ही साथ रोजगार के माध्यम से वो अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छे से कर सकती हैं.
0: बिल्कुल
1: तो
0: लता जी,
1: मुझे ऐसा लग, मैंने ऐसा आपसे एक बार पहले भी बात करी तो पता चला कि कोरोना के समय भी कुछ महिलाओं को आपने मतलब प्रशिक्षित किया था, उनको एजुकेट किया, और उन्होंने बाद में इस समय बहुत अपने परिवार को फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मदद करी थी. तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कोरोना के समय में भी अब तक आपने कितनी महिलाओं को फाइनेंशियली

0: अपडेट कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो गई, कि वो अपने परिवार का और अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं।
1: जैसे कि लता जी, अभी तक मैंने 3,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है बेकिंग के लिए,
0: वाह।
1: उसमें से 400 से ज्यादा जोधपुर में ही लेडीज अपना काम कर रही हैं, अपना अपने अपने घरों से ये काम कर रही हैं। उन्होंने के लिए उन्होंने कुछ भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और घर से ही बिल्कुल छोटे से अगर आपने अगर
0: सेटअप से
1: इन्वेस्ट किया, हाँ छोटे से
0: जी
1: सेटअप से उन्होंने काम शुरू किया है, और
0: जी
1: अभी वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो आती भी हैं, मतलब जैसे पर्सनली थैंक यू बोलने भी आती हैं। तो वही एक रियल अचीवमेंट है कि जब मुझे इतना प्रेज करती हैं कि मैम आपके कारण ऐसा हो रहा है। और उन्होंने कुछ लेडीज तो जैसे कि टीचिंग भी कर रही थी, पर अब वो टीचिंग अगर छोड़ के अपने घर से ही काम कर रही हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो जब आके खुश हो जाती हैं और जब मैं उनके काम को देखती हूँ, तो मुझे सच में रियल हैप्पीनेस लगता है कि ये तो बिल्कुल वंडर ही हो गया।
0: वो वाकई में वो बात आज मुझे याद आ रही है भावना जी, कि दुनिया में दो शख्स बहुत खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे। पहले आपके माता पिता, दूसरा आपका गुरु जिसने
1: बिल्कुल
0: आपको सिखाया। वो ही दो दुनिया में ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं और आपकी हर कामयाबी में उनको एक अलग ही खुशी मिलती है। वाकई में
1: बिल्कुल लता
0: बहुत
1: जी,
0: प्राउड टू ऑफ यू भावना जी के, वाकई में बहुत अच्छा कार्य आप समाज में कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये भी एक सामाजिक सेवा ही है, जो घर बैठ के भी आपने कई महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार कर दिया। भावना
1: बिल्कुल
0: जी, एक छोटा सा बेसिक सवाल है कि कोई भी बेकरी वो शुरू करना चाहता है तो उसको लगभग मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट के साथ वो शुरू कर सकता है, और बेसिक क्या इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए?
1: लता जी, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई एक बिल्कुल बेसिक सा काम अगर शुरू करना चाहता है, तो 3 से 4 हजार के इन्वेस्टमेंट में वो काम शुरू कर सकता है, फिर उसी से वो धीरे धीरे काम को बढ़ाता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, एकदम से ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल एक बीटर मशीन चाहिए, और थोड़ा सा बिल्कुल छोटा मोटा रॉ मटेरियल चाहिए, मैदा है, शक्कर है, बिल्कुल घर का सामान से ही हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर इनिशियली लेवल की बात करें तो।
0: जी, तो एक इंसान मिनिमम 15 से 10 दिन में ये काम सीख सकता है?
1: बिल्कुल 10 से 15 दिन में हम उनको बेसिक नॉलेज दे देते हैं, और अगर कुछ बच्चों को बिल्कुल प्रोफेशनली सीखना है तो हम उनको 1 मंथ में इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो बिल्कुल अपना खुद का बेकरी वगैरह भी खोल सकते हैं।
0: अरे वाह। तो आपने अपना सेटअप लगाने की सोची है, या आप अभी भी घर से ही कर रहे हैं, या ऐसा कुछ आपने?
1: नहीं, मैं मेरा काम अभी भी घर से ही कर रही हूँ, घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो खोला है,
0: अरे
1: क्योंकि
0: वाह।
1: मैं लोगों को भी यही बोलूंगी कि अगर अपन कोई भी दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो उसका रेंट लगता है। फिर उसके लिए मुझे समझ में आया कि मुझे इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाना है, क्योंकि उसके लिए वापस मुझे दुकान में मुझे बिल देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कोई मेल स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। तो मेरा
0: जी
1: स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर गोल था कि मुझे ऐसा दुकान वुकान तो नहीं खोलना है।
0: अच्छा, ठीक है भावना जी। ये बताइए कि अब तक आपकी बेकरी में कुछ, क्योंकि केक सिर्फ केक के नाम से ही केक को इमेजिन करते हैं तो एक सिंपल सा चौकोर केक आपके दिमाग में आता है। आपने आपकी एक्सपर्टाइज किन किन केक्स में रही है, या बेकरी के कौन कौन से केक के अलावा आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो लोगों को बहुत पसंद आए हैं?
1: बिल्कुल मैम, पहले तो जोधपुर में बिल्कुल बेसिक से केक, अगर जैसे हम पहले सुनते थे जब हम भी छोटे थे, तो ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक, हम भी यही सुनते थे। पर अभी एक्चुअली जोधपुर में जैसे कि बिल्कुल बेसिक से केक चलते थे, फिर अभी हम होम बेकर्स ने क्या किया है, हमने जो लोग इमेजिन करते हैं उसको हम बिल्कुल वैसा ही बना के देते हैं।
0: क्या
1: जैसा आप
0: बात।
1: इमेजिन करेंगे वैसा हम केक आपको बना के दे देंगे, यही हमारा विजन है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि 5 मंजिल का, 6 मंजिल का केक बनाते थे लोग, फिर हम कार शेप में केक बना के देते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ केक में एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, अभी हमने जैसे बहुत हेल्दी वे में भी हमने बेकिंग शुरू की है, जैसे
0: जी
1: कि आटे से ब्रेड बनाना, फिर हम रागी से, जवार से, बाजरा से, इनसे हम कुकीज और बिस्किट बनाना शुरू करा। वो मैंने मेरे बच्चों के लिए शुरू किया था कि मेरे बच्चों को मेरे को कुछ भी अनहेल्दी नहीं खिलाना है, तो मैंने
0: क्या
1: कुछ,
0: बात
1: फिर वो जब भी लोग आते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि रागी और बाजरा से इतने टेस्टी केक बन सकते हैं। तो मैं
0: है।
1: बिल्कुल उनको बोलती हूँ हाँ बन सकते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके जब मैंने खुद के बच्चों के लिए ट्राई किया,

0: मैंने लोगों को भी खिलाया और फिर अब मैं बच्चों दूसरे लोगों को भी मैं वही सिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल अगर आप अगर काम नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बेकिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, और एटलीस्ट घर पे तो हेल्दी चीजें ही खानी है। तो उसके लिए मैं भी लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप सीखिए, जरूरी नहीं है कि सबको बिजनेस करना है, कि घर पे भी अगर अपन हेल्दी कुछ खाना चाहते हैं तो अगर खुद की स्किल से और खुद के हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसके जैसा तो कुछ कोई बीट ही नहीं कर सकता है।
1: यानी अब गिल्ट फ्री होकर हम खा सकते हैं।
0: लता जी, आप गिल्ट फ्री होके आप अपना जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ये सच में इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई आटा नहीं है, तब मैं उनको बोलती हूँ आप खुद से आके सीखिए, तब आपको विश्वास आएगा कि इसमें हमने बिल्कुल शुगर नहीं डाली और बिल्कुल आटे का भी यूज नहीं किया है।
1: क्या बात है, यानी हमारे जितने सुनने वाले श्रोता हैं, हमारी जितनी भी सखियां हैं, कम से कम जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, एटलीस्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप शुगर फ्री, आटा फ्री, मैदा फ्री भी बहुत अच्छे से आप केक बना के, आप मिलेट्स से केक बनाकर, आप बहुत अच्छे फाइबर युक्त पदार्थों से भी बहुत अच्छा केक बना सकते हो। और आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही भावना जी कि जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस करें, आप अपने परिवार के सदस्यों को भी अच्छा हेल्दी खिलाने के लिए भी आप आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपके साथ ज्वाइन होकर उन चीजों को सीख सकते हैं। भावना जी,
0: बिल्कुल
1: चलते चलते एक सवाल और है कि जितना मैंने आपको स्टडी किया है, आपको मीडिया के थ्रू मैंने समझा है, मैंने नोटिस किया है कि अक्सर आप महिलाओं को ही बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं, या महिलाओं से, आपके यहाँ पे कोई मेल स्टाफ नजर नहीं आया मुझे,
0: जैसे
1: ऐसा
0: मेरे
1: क्यों?
0: से, जैसे लता जी आपने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे से कई लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी भी मेल स्टाफ को हायर क्यों नहीं किया, या कभी भी आप मेल ओरिएंटेड क्यों नहीं है। तो जब मुझे ये जब भी मैं भी शुरुआत में मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, पर मैं बिल्कुल क्लियर थी जब मेरी स्किल्स मैं लेडीज को सिखा रही हूँ और अगर मैं कोई मेल स्टाफ हायर कर रही हूँ तो फिर उसका तो कुछ यूज ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ही यही था कि मेरे को बिल्कुल क्लियर विजन था कि मुझे महिलाओं
1: महिलाओं
0: को ही
1: को,
0: आगे बढ़ाना है।
1: अच्छा,
0: अगर
1: ओके।
0: अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है, जैसे प्लम्बिंग भी होता है या कुछ भी छोटा मोटा काम होता है, अगर कोई मुझे पता चलता है कि ये कोई लेडी ये काम कर रही है तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप आओगी ये काम करने, क्योंकि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई महिला आगे बढ़े। तो इसीलिए मैंने मेरे बिजनेस में किसी भी को मतलब इन्वॉल्व नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ मैंने महिलाओं को ही से उन्हीं के साथ मैंने काम करना शुरू किया है। तो लता जी आज मेरे पास 5 का स्टाफ है एंड वो 5 का स्टाफ भी मुझे कम पड़ रहा है, इतना काम है। तो जो भी लोग काम सीख के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा, अगर कोई पुरुष वर्ग सीखना चाहे तो
0: लता जी सीख तो सकता है पर मैं उनको दूसरा सजेस्ट कर सकती हूँ, पर पर्सनली मैं कोई मेल को नहीं सिखाती हूँ।
1: अच्छा, आपने एक तरह से इसको एक अपना लाइफ का वैल्यूबल उसमें ऐड कर रखा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दूं, उनको स्वावलंबी बनाऊं, ये
0: हाँ आप ये
1: आपका
0: कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लता जी जब महिला कुछ करती है ना तो इतनी खुशी मिलती है ना। पुरुष पुरुष वर्ग तो काम कर ही रहा है, पर मेरा फोकस महिलाओं पे है कि वो काम करके काम सीख कर और खुद की लाइफ भी अच्छी बनाए, खुद के बच्चों के लिए भी कुछ करें। तो जब जब महिलाएं आती है बोलती है मैम आज मैंने ये मेरे बच्चे के लिए खरीदा जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला वर्ग के लिए भी आगे काम होना चाहिए। तो इसलिए
1: चलिए,
0: मेरा पूरा फोकस वही है कि मैं लेडीज को सिखाऊं और उन्हीं को मैं आगे मोटिवेट करूं और उन्हीं को प्रमोट करूं।
1: भावना जी, आप हमारे नारीवाटी का स्टूडियो में फोन आउट के माध्यम से हमसे जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर करी, और एक घर से एक महिला छोटा सा सेटअप शुरू करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है, उसका आप एक जीता जागता उदाहरण है। और चलते चलते बस मैं यही चाहूंगी कि क्या आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती है, ताकि वो भी मोटिवेटेड हो और खुद को पैरों पे खड़ा कर सके।
0: मैं महिलाओं को और जो भी श्रोता जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि अगर आप में काम करने का जुनून है तो आप घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। अगर आपको कोई कोई भी पर्सनल इश्यू है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं तो आप नॉट ओनली बेकिंग, आप और भी कुछ काम सीख के घर से बिल्कुल कर सकती हैं। बस थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट वो जरूरी है, वो मेरा बिल्कुल रहेगा कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, अगर आपके हस्बैंड का आपके पास सपोर्ट है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। बस खुद में एक विश्वास

0: लेके आने की देर है कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो बिल्कुल अटकाव नहीं होते हमारी लाइफ में, उल्टा वो हमको पुश करते हैं कि हमको कुछ करना है।
1: जी,
0: एंड थैंक यू सो मच लता जी मेरे को भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
1: नहीं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सखियों, अभी हम बात कर रहे हैं भावना जी से, और भावना जी, आपने हमारे सखियों के साथ बहुत ही प्रेरणादायक बातें साझा करी कि एक घर से आप अपने सपनों की उड़ान को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने कल्पना को किस मतलब कितना बड़ा आकाश दे सकते हैं, और ना केवल आप रोजगार उससे अपने लिए कर सकते हैं, साथ ही खुद स्वावलंब होने के साथ साथ औरों को भी आप मदद कर सकते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सखियों ने आपकी बातें जरूर गौर से सुनी होगी, और अगर किसी के मन में एक छोटा सा भी जज्बा है कि हाँ वो कुछ करना चाहती हैं, तो आज उन्हें आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिली मिली होगी। और हमारे फोन आउट के माध्यम से आप हमसे जुड़ी, हमारे सखियों से आपने बातें से साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक
0: थैंक यू सो मच लता जी मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
1: यू।
2: सखी, अभी आपने एक फ़ोन आउट वार्ता सुनी कि कैसे घर से एक केक का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बातचीत की थी द केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी से, बातचीत की लता परिहार जी ने। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जी हाँ, सपने पूरे करने के लिए, ख्वाब पूरे करने के लिए बस मन में जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जज्बे की कहानी हम एक सुन चुके हैं, और एक वो घरेलू उद्योग जो उन्होंने शुरू किया था घर से, और ऐसे कई सारे उद्योग हैं जो हम घर से शुरू कर सकते हैं। हस्तशिल्प उद्योग है, अगरबत्ती निर्माण है, मोमबत्ती को बनाना है, अचार पापड़ का उद्योग है, बेकरी है, हस्तशिल्प

0: बनाना है, अचार पापड़ का उद्योग है, बेकरी है, हस्तशिल्प के जो आभूषण है, जो अपन हाथ से ना छोटे छोटे आभूषण बनाते हैं,
1: आजकल
0: जो
1: बहुत
0: ज्वेलरी
1: चलन में
0: बनवाते
1: है, आजकल
0: हैं,
1: बहुत चलन में है पूर्णिमा जी,
0: हाँ
1: और बहुत सुंदर सुंदर से आभूषण बनते हैं, और साथ में बुनाई कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, और आजकल तो मसाले भी, मतलब जिसको कहते हैं ना रेडी टू मेक मसाले, आप पोहा
0: हाँ
1: रेडी टू मेक बना सकते हैं, आप सांभर मसाला रेडी टू एक बना सकते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे मसाले हैं जो आपके समय की तो बचत करते ही करते हैं, साथ ही आपके काम को भी बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ में साबुन और कपड़ों का निर्माण तो आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रखा है।
0: हाँ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ का बंदेज और ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो अपन घर से शुरू कर सकते हैं। कश्मीर में कालीन बड़े फेमस है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी और गुजरात की कढ़ाई भी बहुत फेमस है।
1: बिल्कुल सही कहा। और पूर्वोत्तर में जो बांस के उत्पाद है ना पूर्णिमा जी, वो उनकी परंपरा को तो दर्शाता ही दर्शाता है, साथ में उनके मतलब उनकी कला को दिखाता है, और घरेलू उद्योगों में उसका शानदार बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इन उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, और साथ ही साथ खासकर जो महिलाएं जो घर का काम करने के बाद जो पूरा दिन जो फ्री रहती हैं, तो उनको एक तरह से रोजगार का भी साधन मिल जाता है, और अब तो बहुत बहुत छोटी छोटी कंपनियां ऐसी खुल गई है जो इनको आगे बढ़ावा देती है, बहुत सारे एनजीओज है जो इनको बहुत इनको सही दिशा देते हैं, मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनमें वो अपने उत्पादकों का प्रचार और प्रसार कर सकती है, तो अब वो एक सिर्फ पर्टिकुलर क्षेत्र से सीमित नहीं है, अब पूरा कहते हैं ना पूरा आसमान उनका है,
0: हाँ
1: जितना चाहे वो अपने पंख फैला सकती हैं।
0: और यही जो घरेलू उद्योग है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाता है, एक महिला को मजबूत बनाता है, जिससे देश मजबूत बनता है।

0: पूर्णिमा जी, अक्सर आपसे सुना होगा कि एक लाइन हम सुनते आ रहे हैं अक्सर और पढ़ी भी है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, है ना। और वो सिर्फ एक ही घर को रोशन नहीं करती है, वो दो दो घरों को रोशन करती है, और दो घरों से रोशन से पूरी, मतलब क्या ना, समाज भी रोशन होता है। और खासकर अगर उस लड़की में हुनर है तो ज़रूर उसके हुनर के उनको पंखों को ज़रूर पंख मिलने चाहिए। और आजकल छोटी छोटी चीज़ें के बहुत सारे ऐप आने लग गए हैं। अगर आपको नहीं भी पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, मगर अगर आपको छोटा मोटा भी, अगर आपको मीडिया चलाना आता है या कंटेंट अगर आप लिखती हैं, मतलब कहने के लिए पूर्णिमा ऐसा है ना कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है आपके पास तो ही आप जीवन में कुछ को आती है। शायद दूर दराज किसी को नहीं आती होगी। अब आज एक जैसे बहुत सारी महिलाओं ने जैसे बहुत सारी रेसिपीज डालनी शुरू करी है,
1: जी
0: अब रेसिपीज में भी एक्सपेरिमेंट होने लगे। पहले तो एक सादा भोजन होता था, अब खास भोजन होने लगा,
1: फ्यूजन
0: अब
1: जिसे कहते
0: फ्यूजन भी होने
1: हैं
0: लगे, अब आजकल जो मिलेट्स पे भी बहुत ज्यादा जोर देने लगे।
1: जी
0: यानी कुल मिला के अब हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक होने लग गए। और इसी से संबंधित अगर आज कुछ खाद्य पदार्थ, और मोस्टली लोग चाहते हैं कि घर का बना हुआ कुछ मिल जाए,
1: हाँ,
0: है ना।
1: अगर हम बाहर रहते तो हम सबसे पहले ये खोजते कि घर का खाना हमें कहाँ मिलेगा, घर
0: बिल्कुल,
1: जैसा खाना
0: घर
1: चाहिए।
0: जैसा खाना, और घर जैसा खाना, घर जैसा स्वाद, और घर से बने उत्पाद वाकई में आज देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। और वो हर महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं,
1: जी
0: उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं, है ना। तो आत्मनिर्भर जब एक महिला आगे बढ़ती है ना पूर्णिमा, तो स्वयं अकेली नहीं बढ़ती, क्योंकि हर महिला चाहती है कि जो कुछ भी वो कमाती है या जो कुछ भी उसको उसके बदले में मिलता है तो वो अपने परिवार में उसको बांटती है। और जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है।
1: हाँ, वो तो है। और अगर जब महिला आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ वो शिक्षा ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे माध्यम हैं जो जुड़े होते हैं उसके साथ। शिक्षा है, व्यापार, विज्ञान, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन सब का ज्ञान अगर हो या आप बढ़ना चाहते हैं तो अपन आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ आप खुद को निखार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।

0: तो बैठा है। आत्मनिर्भरता जो लता है वो आत्मनिर्भरता अपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, आत्मनिर्भरता वो होता है कि अपने जो डिसीजंस हैं वो आप खुद लेना सीखें,
1: सही
0: चाहे वो
1: है,
0: आपकी हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन के लिए हो, या आपके करियर के बारे में हो, या घर के किसी परिवार के सदस्य के बारे में हो। अगर जहाँ पे आप खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं,
1: सही है,
0: क्योंकि आप जब खुद आत्मनिर्भर होंगे तो आप दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं, आप दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकते हैं, और आपके बच्चे भी आपको जब आत्मनिर्भर देखेंगे तो वो भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1: ये कहना करने से ही सिखाया जाता है,
0: जी
1: क्योंकि जब आपको फाइट करते हुए देखेंगे, आपके अपने संघर्ष की कहानी जब बच्चे देखेंगे, क्योंकि सक्सेस पूर्णिमा एक दिन में नहीं मिलती। और ये मैं मेरी सखियों को भी कहना चाहती हूँ, सखियों, कि हम बातें करते हैं बहुत सही है, सुननी भी अच्छी लगती है, मगर जब उसको हम क्रियान्वित करने लगते हैं तो एक चीज़ ज़रूर मन में ध्यान रखना कि करना करना करना, यानी ट्राई ट्राई ट्राई एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। क्योंकि मेहनत जो है वो पूरा आपका, कहते हैं ना, इम्तिहान पूरा लेती है, आपको इमोशनली भी तोड़ेगी, आपको फाइनेंशियली भी डिस्टरबेंस आएगा, मगर एक चीज़ अगर है कि जज्बा, कि मुझे मेरे हुनर पर पूरा भरोसा है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं ठहरता। और धीरे धीरे जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, लोग आपको समझने लगते हैं, तो आपको मदद भी मिलती है।
0: हाँ,
1: और
0: अगर बात करें मदद की, तो कई सारी जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी आगे बढ़ रही हैं, कई बार कई जो है घरेलू उद्योग चला रही हैं या ऑनलाइन व्यवसाय जो है वो कर रही हैं, पर और कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इन समूह के माध्यम से जो अपने हाथ के बने उत्पाद हैं उनको बेच रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और अपने परिवार की आर्थिक रूप से हेल्प कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब आप अपने परिवार को सपोर्ट करते हो तो आपके अंदर एक

0: अलग ही शक्ति
1: कॉन्फिडेंस
0: और
1: आता
0: अलग ही
1: है।
0: कॉन्फिडेंस आता है।
1: सही कहा पूर्णिमा। और सरकार की भी अनेक योजनाएं हैं, जैसे महिला उद्यमिता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास योजनाएं भी ऐसी जो अनेक योजना है जो महिला उद्यमिता के कार्यक्रम या स्वयं सहायता समूह, और ये जो है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। और मतलब वो ये वाली बात है कि महिलाओं की जो शक्ति है ना, उनकी मेहनत और वो जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, ये समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। और जब महिलाएं आत्मविश्वासी बनती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो घर तो उठता ही है, देश भी उठता है और समाज तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये पूर्णिमा वाकई में वो वाली बात है ना कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि हारे नहीं, हिम्मत ना हारे, मन के हारे हारे, मन
0: मन
1: के
0: के
1: जीते
0: जीते
1: जीत
0: जी।
1: है। तो बस अपने मन को मजबूत करें और अपने हुनर को आगे बढ़ाते रहें।

0: सखियों, आज हमने जाना कि छोटे मोटे घरेलू उद्योग किस तरह बड़े बदलाव ला सकते हैं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता समाज की प्रगति का आधार कैसे बन रही है, और आपको ये आज की उम्मीद करती हूँ पूर्णिमा कि हमारी सखियों को ज़रूर इसमें कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा।
1: हाँ, और आपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका। और आज की नारी वाटिका की टेक्निकल टीम से हम आपको रूबरू करवाते हैं। एचपीटी पे थे विक्रम सिंह भाटी, सीएल सोनी,
0: कंट्रोल रूम पे थे नरेंद्र सिंह राठौर, और ये जो खूबसूरत से नगमे आपको आप तक पहुंचाए थे वो थी विजेता जी वैष्णव।
1: और प्रोग्राम प्रोड्यूसर है मनीष सोलंकी। इस उम्मीद के साथ हम दो आपकी रेडियो सखी, मैं पूर्णिमा, मेरे साथ
0: लता परिहार,
1: लेते हैं विदा, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका कार्यक्रम, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और एफएम सन सिटी। इस समय दिन के 2:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के

0: विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री

0: शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और

0: उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आइए सुनवाते हैं हम आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से। आवाज़ अखिल सचदेव की है और बोल और धुन भी उन्होंने ही बनाया है।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजें बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन से सजाया अमित त्रिवेदी। फिल्म का नाम काफिराना, केदारनाथ।

शरीफ दोषी ने धुन से सजाया बोल लिखे कुमार ने, और ये गीत अभी आपने सुना हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत एम एस धोनी फिल्म से।

ये धुन है अमाल मलिक ने सजाई और इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे मनोज मुंतशिर ने।

अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए काय पोछे फिल्म से। आवाज़ अमित त्रिवेदी की है, धुन से भी सजाया अमित त्रिवेदी ने है, बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने।

ये आवाज़ थी लकी अली की और दो और दो प्यार, ये था फिल्म का नाम। इस फिल्म का ये गीतांश अभी आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा।

0: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में। ठीक 5 बजे हम आपसे मिलते हैं इसी जगह पर, और वीकेंड का भी मूड ऑन हो चुका है हमारा तो एटलीस्ट। पर अगर आपका नहीं हुआ है ना, तो टेंशन मत लीजिए। अगले 1 घंटे में हम लेकर आए हैं जबरदस्त म्यूजिक, मस्ती और यंग जनरेशन से जुड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशंस।
1: तो मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त यशथानवी, और मेरे साथ हैं
0: मैं अदिति मोडिया।
1: तो श्रोताओं, आज कई सारी बातें करेंगे आपके साथ, जिनमें आपके साथ साझा करेंगे कई सारे नए ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, साथ ही साथ कई सारे म्यूजिकल ट्रैक आप और हम एक साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

तो श्रोताओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे जो है तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, और आजकल के हर युवा साथी जो हैं वो वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर से काफ़ी वाकिफ़ हैं। और हर किसी को पता है कि बहुत से आजकल बच्चे हो या यूथ हो, गेम जो है वो वीआर के ऊपर खेलना पसंद करते हैं।

0: करते हैं, जिसमें कि उनको एक ऐसी दुनिया कंप्यूटर से जनित मिलती है जिसमें कि वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। उनको हकीकत में लगता है कि वो गेम के अंदर खुद उतर चुके हैं और खुद या तो गाड़ी है या जो भी जिस तरह का गेम है वो खुद वो चला रहे हैं और जो भी एडवेंचर होता है वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी 3D और एक ऐसी आर्टिफिशियल कृत्रिम दुनिया जिसके अंदर कि आप चले जाते हैं जब आप उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर कोई भी कार्य करते हैं। तो ऐसा ही एक नया कदम एजुकेशन के अंदर हम उठा सकते हैं, जिसके कि थ्रू बच्चे जो हैं वो कई सारी पढ़ाई की बातें या फिर एजुकेशन की जो चीज़ें हैं वो उसके थ्रू सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल यश। और अगर हम देखें इसको एजुकेशन में यूज़ करना वीआर को, तो सोचिए अगर ज्योग्राफी की क्लास में हम खुद मैप में देखने से बेटर उस जगह पे पहुंच जाए, या कोई भी
0: बिल्कुल
1: हिस्ट्री का कोई
0: बिल्कुल,
1: सीक्वेंस है तो हम उसमें खुद प्रेजेंट होकर
0: जैसे
1: जी
0: अगर
1: पाए
0: हल्दीघाटी
1: वो
0: का
1: पल।
0: युद्ध है तो उसमें खुद बच्चा उसमें बैठ के और देख रहा है कि कैसे चल रहा
1: हाँ, तो
0: है।
1: उस बच्चे को वो ज़्यादा याद रहेगा और उसके काम फ्यूचर में काम जरूर आएगा फिर वो नॉलेज। तो ये क्या है ना, वीआर हमको एक्सपीरियंस करना और फील करवाने का काम करती है, तो ये काफ़ी
0: बिल्कुल
1: बेटर है। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं अगर, तो वो ऑपरेशन थिएटर्स का जो सर्जिकल जो होता है उनका, वो यूज़ कर सकते हैं इस वीआर को। और अगर हम देखें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो वो भी काफ़ी एडवांस जो मशीनरी
0: मैकेनिकल।
1: होती है तो वो भी इससे उसका नॉलेज बढ़ सकता है।
0: और एक लाइव एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है
1: हाँ
0: हर चीज़
1: बिल्कुल।
0: के बारे में। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी पढ़ने से या फिर सुनने से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको हमारा माइंड ज़्यादा कैप्चर करता है, उसका एक्सपीरियंस हमको लाइफ टाइम याद रहता है।
1: और ये
0: तो
1: बिना
0: हाँ
1: डेंजर के हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर पाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और अगर बच्चों को ये दिखाएंगे और इस तरह से सिखाएंगे तो शायद गेम से हटकर वो इस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे और शायद उनकी फील्ड जो है वो अलग ही तौर पे जो है उनको लेके जाएं। जैसे कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को जो हिस्ट्री पसंद नहीं आती है, कई बच्चों को कि हिस्ट्री बोरिंग लगती है या फिर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको वही हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगे कि किस तरह से पहले के ज़माने में क्या होता था और कैसे कैसे सभ्यताएं जो थी जिसके कारण कि हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उन सभ्यताओं को भी वो जान पाएंगे।
1: बिल्कुल। और फ्यूचर में शायद क्लासरूम्स सिर्फ ब्लैक बोर्ड और बुक तक सीमित ना रहें, और शायद
0: बिल्कुल
1: वीआर भी इंक्लूड कर लें, जिससे हम ऑनलाइन हो पढ़ाई या ऑफलाइन हो, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जब होगी ना, तो क्यूरियोसिटी जो है बच्चों की वो ज़्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और बच्चे चाहेंगे पढ़ना और कुछ नया सीखना और जो लाइफ टाइम वो इमेज उनके माइंड में क्रिएट होगी वो उनको हमेशा याद रहेगी।
1: क्या पता फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाए फिर।
0: बिल्कुल
1: इसी बात पे आप सुनते हैं ये अगला गीत।

0: दोस्तों, जैसा कि ये गाना था, ये जो इंसान है वो तो नहीं कह पाया अपनी दिल की बातें। तो इससे मैं एक सोच रही हूँ कि हम रिजेक्शन को कैसे फेस करते हैं, ये चीज़ वो गाना ये बताना चाह रहा है। तो हम क्या है ना, अक्सर ऐसे सिचुएशंस में जहाँ हमको रिजेक्शन मिलती है, वहाँ हम डील करना, उससे कैसे डील करते हैं वो हम भूल जाते हैं, और हम शायद उससे गलत कदम उठा लेते हैं या जो वो चीज़ कर लेते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और उससे जो है हमारा जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो यूथ है, जब रिजेक्शन से गुजरता है, चाहे कॉलेज एडमिशन हो, जॉब इंटरव्यू हो, कंपटीशन हो, या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, नो सुनना कभी आसान नहीं होता। पर सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है इसमें, मुझ में ही कमी होगी कोई। लेकिन क्या हर रिजेक्शन का मतलब यही होता है? ज़रूरी नहीं। कभी कभी ना रिजेक्शन का रीज़न टाइमिंग होता है, कभी कंपटीशन और कभी सिर्फ सिचुएशन। हर नो आपकी टैलेंट या वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं होता दोस्तों।
1: बिल्कुल अदिति, बिल्कुल सही बताया आपने कि हर रिजेक्शन ये साबित नहीं करता है कि आप कुछ उसके लिए लायक नहीं है या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे युवा साथी ये सोचते हैं कि आज कोई इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद में आपकी कोई नौकरी ही नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये सोच के चलिए कि इस इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो उसके क्या कारण है कि आप रिजेक्ट हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने एकदम अपना 100% उसमें दिया है तो आप उसमें और भी सुधार कीजिए और फिर अगली बार फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार ये बात सही नहीं है कि केवल और केवल रिजेक्ट करने वाला ही व्यक्ति सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो इसको रिजेक्ट किया गया है वो गलती से हुआ है, क्योंकि ऐसे कई सारे सितारे हैं जिनको कई बार कई जगहों से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज वो एक इस दुनिया के चमकते सितारे हैं। क्योंकि हम ऐसे कई सारे सितारों के बारे में जानते हैं जिनकी आवाज़ के कारण उनको कहीं ना कहीं से रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज़ सही नहीं है या अच्छी नहीं है, लेकिन वही सितारे जो हैं आज अपनी आवाज़ के कारण हर किसी के दिल में राज करते हैं। और ऐसे कई युवा साथी हैं जो खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको कई बार कभी 10th में या तो आपके नंबर कम आ गए हों या फिर सप्लीमेंट्री आ गई हो या फिर आप कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए हों, लेकिन आप आज की तारीख में किस

0: मुकाम पर हैं वो आप स्वयं जानते हैं, और इसके बारे में आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स हो या फिर कई सारे ऑफिसर्स हो, वो भी जब भी सुनाते हैं अपनी कहानी, तो उन में से कम 90% लोगों के जो है वो पिछले पास्ट के अंदर ऐसे कई सारे दौर आते हैं जिसमें उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो एक कामयाब व्यक्ति हैं।
1: बिल्कुल। और यश, मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि है ना, हम सोशल मीडिया पर हर किसी की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और कोई भी ये शेयर नहीं करता कि उनने कितने रिजेक्शंस फेस करे हैं या उनको कितनी नाकामयाबी मिली है। तो ये चीज़ हमको युद्ध से कहनी ज़रूरी है कि जो युद्ध सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उस पर डिपेंडेंट ना हो, जो उसमें दिखा रहे हैं हैप्पी लाइफस्टाइल हर किसी की, वो
0: बिल्कुल
1: ज़रूरी नहीं कि
0: बिल्कुल
1: वो सच हो। और सच है तो पीछे का जो नेगेटिव्स हैं वो हर किसी ने नहीं दिखाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में हर किसी युवा साथी को ऐसा लगता है कि वो इतना कामयाब है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत आपको नहीं पता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे भी हैं आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ये हमेशा मान कर चलें, क्योंकि अगर आप स्वयं को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो दुनिया आपको भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर देंगी।
1: बिल्कुल। और रिजेक्शन जो है ना, उसको एक्सेप्ट करना और उस हारने से जीत मतलब सीखना और
0: बिल्कुल
1: उसको जीत में बदलना, यही होता
0: बिल्कुल।
1: है रिजेक्शन
0: और
1: का असली
0: अगर
1: मंत्र।
0: आप रिजेक्शन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रो दीजिए और अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ में उसको साझा कर दीजिए, खास करके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, क्योंकि उनकी आंखों में जो आपकी कद्र है वो आपको क्या समझते हैं तब आपको पता चलेगा, और आपको ये नॉलेज मिलेगा कि वो रिजेक्शन तो बहुत ही मामूली था, आप किन के लिए क्या मायने रखते हैं वो बहुत
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उस बात को साझा करिए, और अगर थोड़े से आंसू आ भी रहे तो निकाल लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में आप एक बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हैं या एक बहुत बड़े सितारा बनने वाले हैं।
1: बिल्कुल। इसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ चलिए सुनते हैं ये एक बेहतरीन गाना।

0: तो श्रोताओं, जैसा कि आजकल हर एक युवा साथी जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि हम हर बार देखते हैं या फिर घर में भी हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी हमारे माता पिता कोई भी हमको काम करने को कहते हैं, हम कहते हैं थोड़ी देर में कर लूँगा, या अभी नहीं थोड़ी देर बाद में कर लूँगा, या फिर मम्मी अभी नहीं थोड़ा
1: ये
0: देर रुक
1: तो
0: जाओ,
1: काफी रिलेटेबल है.
0: बस 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट का कब वो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल.
0: या फिर हमारी जैसे कि बहुत से बच्चों की अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो जो होमवर्क जो हॉलीडे के लिए डाला जाता है स्कूल्स में, वो बच्चे
1: वो
0: सोचते
1: तो
0: हैं कि
1: बच्चों को
0: आज नहीं कल कर लेंगे आज, और कब वो 1 महीना पूरा हो जाता है और तब उनको दिमाग में आता है कि होमवर्क करना है।
1: बिल्कुल, अब तुमने याद दिला दिया है उनको.
0: हाँ, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को टालम टोल करना, या फिर आप उस काम को अभी नहीं करके थोड़ी देर बाद कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, और उसको टालते जाना काम को।
1: बिल्कुल. और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे ना सिर्फ लेजीनेस ही एक रीजन नहीं है, और कभी कभी ना हम जो भी टास्क हमको करना है उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं या डिफिकल्ट समझ लेते हैं ना, तो कभी परफेक्शन का प्रेशर होता है कि वो हर चीज़ परफेक्शन से हो या
0: बिल्कुल
1: परफेक्ट टाइम पे ही हम शुरू करेंगे
0: बिल्कुल
1: कि वो उस दिन करने दो मेरे को, मैं तब कर लूंगा काम. ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है क्योंकि वो टाइम कभी आता ही नहीं है. उससे
0: और
1: उसकी वजह से हम और डील करते रहते हैं और लास्ट में यही कहते हैं काश उस दिन कर लिया होता.
0: बिल्कुल, और अदिति इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हम जो उस वक्त मोमेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस वक्त उसको टालते हैं, उस वक्त भी हमारे माइंड में बैक ये चल रहा रहता है कि ये काम मुझे करना है,
1: हाँ.
0: तो उस मोमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते और वो काम भी हम डिले कर देते हैं।
1: ये
0: तो
1: तो.
0: इसमें जो कबीरदास जी ने उस वक्त दोहा कहा था कि काल करे सो आज कर,
1: आज
0: आज करे
1: कर
0: सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी
1: होई
0: करे
1: कर
0: को
1: को
0: कब।
1: कब.
0: यानी कि अगर कोई काम आपको करना है कल, तो उसको आज ही कर लो, और आज करना है तो अभी ही कर लो, क्योंकि अगला पल क्या होगा वो आपको पता नहीं है। इसको आप इमोशनली भी सोच सकते हो, कोई एजुकेशन के तौर पे भी सोच सकते हो, या फिर अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो उसको आपको हाथों हाथ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले पल में क्या से क्या बदल जाए कोई उसका भरोसा नहीं
1: तो
0: है।
1: दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने से एक फ़ायदा भी है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा. तो इसको डील कैसे करना है, इसको कैसे टैकल करना है, तो वो बताती हूँ मैं कि आपका जो भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बांटना है. और ऐसे सोच लीजिए हर 10 मिनट में आपको वो काम से ब्रेक भी लेना है ताकि आप फोकस्ड रहें. तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आप उसको दूर रखिए इस टाइम में पूरे, और अपनी प्रोग्रेस जो है जितना आपने काम करा है उसको सेलिब्रेट भी करते रहिए. अगर आप रिवॉर्ड देते रहेंगे खुद को तो आपको काम करने का मन भी करेगा.
0: बिल्कुल, और सबसे आसान तरीका यह है कि ये सोच लीजिए दिमाग में कि बाद में भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे ही करना है, तो उसी वक्त कर लीजिए, ताकि जो एंजॉय आप अभी करना चाहते हैं वो बाद में आप उसको काम को करके कीजिए, ताकि आपके दिमाग में उसका स्ट्रेस ना रहे कि उस काम को करना है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ अदिति माड़ी, और मेरे साथ हैं
4: यश थानवी।
3: तो दोस्तों, आज के जमाने में ना, मैं देख रही हूँ कि हर दूसरा स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल किसी ना किसी साइड हसल से जुड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या? सिंपल शब्दों में अगर हम देखें कि गिग इकोनॉमी का मतलब है शॉर्ट टर्म या फ्लेक्सिबल वर्क करना, यानी परमानेंट 9 to 5 जॉब के बजाय प्रोजेक्ट बेस या टास्क बेस काम करना, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कैब ड्राइविंग, फूड डिलीवरी, फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग, और भी बहुत कुछ है इसमें।
4: बिल्कुल। और दोस्तों, क्योंकि आजकल कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर रहते हैं, और उनको फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण वो अपने खर्चे नहीं उठा पाते हैं, या फिर रूम रेंट्स हो गया, या फिर खाने पीने के जो खर्चे होते हैं, उन सभी को संभाल करने के लिए वो स्टूडेंट्स या युवा साथी जो है वो साइड में ऐसी कुछ भी कार्य करते हैं जिससे कि उनकी आमदनी भी हो जाए और उनका जो दैनिक दिनचर्या है वो आराम से निकल पाए। इसलिए वो कई सारे, जैसे कि कोई ट्यूशन पढ़ाना, या फिर जैसे कि अदिति ने बताया कि फ्रीलांसिंग करना, फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, या फिर कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वो साइड में एक साइड बिजनेस के तौर पे करते हैं, जिसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं।
3: इससे स्किल्स भी बढ़ते हैं, और जो मतलब जो कर रहा है, और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अगर वो कोई स्टूडेंट नॉर्मल है, कोई बाहर नहीं रह रहा है, तो उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज।
4: बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग पॉकेट मनी इंक्रीज करने के लिए, कुछ लोग फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, और कई सारे युवा साथी ऐसे भी हैं जो केवल और केवल अपनी हॉबी और पैशन को फॉलो करने के लिए भी गिग इकोनॉमी का साथ देते हैं और इसका उपयोग करते हैं।
3: बिल्कुल। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका भी पहला और अच्छा, मतलब अच्छा और बुरा क्या पहलू है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सॉन्ग के बाद।

0: दोस्तों, जैसा कि इस गाने से पहले हमने बात करी थी कि गिग इकोनॉमी जो है वो हम साइड हसल कर रहे हैं, कोई भी अगर कॉलेज स्टूडेंट है वो साथ में काम भी कर रहा है ताकि उसको पॉकेट मनी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। लेकिन हम जानना चाहेंगे इसके दो पहलू क्या है। तो इसका जो क्या है नेगेटिव साइड, ये है कि कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, हेल्थ और सोशल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। दिन में कॉलेज, रात को प्रोजेक्ट्स और वीकेंड पर काम, और धीरे धीरे हो जाता है शुरू बर्नआउट। और बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं होती दोस्तों, जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करें, हर वक्त स्ट्रेस रहें, और या जो काम कर रहे हैं उसका एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि बॉडी और माइंड दोनों रेस्ट मांग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी कि युवा साथी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए जो कार्य करते हैं उसमें उनकी जो खुद की पढ़ाई है या फिर उनकी जो खुद की लाइफ है वो ख़राब होती जाती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे कई सारे गिग वर्कर्स भी हैं जो केवल और केवल इसी गिग इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि कई सारे फूड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर साथ ही साथ कैब ड्राइवर

0: है जो लोग इसी के ऊपर उनकी पूरी मासिक आय जो है वो निर्भर करती है, और उनकी जो पूरी जीवन है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कई बार डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी पार्टनर्स जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो देरी से आते हैं, तो हम उनके ऊपर चिल्ला देते हैं या फिर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, या फिर आजकल कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे हम उनकी शिकायत कर देते हैं ऑनलाइन,
1: बिल्कुल
0: अगर वो 5 मिनट भी देरी से आ जाए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस तपती हुई गर्मी में वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, और किस तरह से वो बारिश हो या गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हर किसी कंडीशन के अंदर वो जो है हमारे घर तक वो चीज़ पहुंचाते हैं, और हम जो है एक मिनट नहीं लगाते। अगर वो 1 मिनट भी देरी से आ गए तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, या फिर उनकी शिकायत कर देते हैं, या फिर उन्हीं को कुछ भी बोल देते हैं। बजाय
1: बिल्कुल
0: इसके हम ये कर सकते हैं कि हम उनको कुछ टिप दें, या फिर साथ ही साथ उनके लिए इतना भी कर सकते हैं कि उनको पानी का पूछें, या फिर उनको पूछें कि आपको कुछ खाने वगैरह की नीड है, या फिर कुछ भूख लगी है तो उनको कुछ ऐसा दें, या फिर कुछ ना करें तो खास करके उनके साथ दें और उनकी समझें। अगर वो कोई तकलीफ़ बताते हैं और एक रीजनेबल रीज़न देते हैं तो उसको समझते हुए उनके साथ में कोई भी गलत व्यवहार ना करें।
1: बिल्कुल है ना, हम ये नहीं देखते, नज़रअंदाज कर देते कि वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अपने ईमानदारी से कर रहे हैं काम,
0: बिल्कुल
1: तो उनका काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ भी करते हैं वो, लेकिन कई बार हम उन्हें रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन नहीं देते, बल्कि बातें
0: बिल्कुल
1: कुछ बातें सुना देते हैं उनको,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर उल्टा हमें ये क्या करना चाहिए, उनको स्माइल देके अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और अगर उनने
0: बिल्कुल
1: कुछ आपको दिया है, डिलीवर करा है, तो थैंक यू बोलिए, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत है हमको, और क्योंकि 10 मिनट
0: बिल्कुल
1: डिलीवरी ऐप
0: हाँ
1: ये सब ऐसे ट्रैफिक जाम में पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि उनसे उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है, क्या पता आपके 10 मिनट के चक्कर में वो कहीं और ऐसे कट लेके आए, उनको हार्म हो जाए।
0: बिल्कुल। और अदिति खास करके जैसे कि हम देखते हैं कि फूड डिलीवरी जो बॉयज़ होते हैं उनको तो हम बेवजह ही कई बार जो है कुछ भी बोलते थे, क्योंकि अगर 2-5 मिनट अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन केवल और केवल जो समय बताया गया उस समय पर वो नहीं आ पाए, उसी कारण से हम जो है कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं। लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें भी उनकी परेशानियाँ और उनकी जो निजी लाइफ है उसको समझना चाहिए कि वो किस तरह से हमारे तक ये प्रोडक्ट पहुँचाते हैं।
1: बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि साइड हसल करना गलत नहीं है, बल्कि नए स्किल सीखना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ, स्टडीज़ और पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जॉब सिक्योरिटी और वो सब भी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आम लोग भी हम लोग हैं उनके लिए सीख भी है कि जो भी आते हैं ऐसे गिग वर्कर्स उनका ध्यान रखें, और बेवजह अगर कोई रीज़न इतना बड़ा ना हो तो ऐसी कोई उनके साथ में दुर्व्यवहार ना करें।
1: इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए सुनते हैं ये अगला गाना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, कई युवा साथी जो हैं वो अपनी वोकेबलरी को, यानी कि हर जगह जब वो स्पीच देने जाते हैं या फिर कहीं भी कोई मीटिंग में बैठे होते हैं या फिर दोस्तों के साथ में भी या फिर कॉलेज में या स्कूल में जब आप बात करते हैं तो बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके शब्द ही हैं जो हर किसी के जहन में रह जाते हैं और हर कोई, अगर आपको किसी को भी अट्रैक्ट करना है या किसी को भी प्रभावित

0: करना है तो केवल और केवल शब्दों के माध्यम से ही आप किसी को जो है वो अट्रैक्ट या प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी वोकेबलरी को अंग्रेजी में सुधारना चाहते हैं तो हम लोग कई बार आपको कई नए सारे शब्द बताते हैं जिसको आप अपनी भाषा शैली में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपनी अंग्रेजी भाषा को और ज़्यादा सुधार सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का जो हम वर्ड ऑफ द डे लेने वाले हैं वो है पार्डन माय फ्रेंच। इसका कुछ भी फ्रेंच से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आप गलती से बोल देते हैं ना कभी, कुछ जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मजाक मजाक में माफ़ी मांगना, ये है इस ईडियम का मतलब, पार्डन माय फ्रेंच। तो कुछ भी इनफॉर्मल जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और कहीं भी आप कवर अप करना चाहते हैं अपनी बात को, तो पार्डन माय फ्रेंच बोलकर आप उसको, बात को दबा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज़ करिए, इसको एंजॉय करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपनी जो वोकैबुलरी है वो आप बढ़ाइए।

0: तो श्रोता हूँ, आज आपके साथ मैं कई सारी ज्ञान की बातें की, साथ ही साथ कई सारी नॉलेजेबल और कई सारी हंसी मजाक की भी बातें की, जैसे कि कई सारे, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी को हम कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जो है हमको नहीं करना चाहिए, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, या फिर कैसे गिग वर्कर्स का जो है हमको सम्मान करना चाहिए, जैसे कि कई सारी बातें हमने की। लेकिन अब जो है घड़ी इशारा हमको कर रही है कि आप सभी से विदाई लेने का समय जो है अब आ चुका है। मैं था आपके साथ में आपका रेडियो होस्ट और दोस्त यश थानवे, मेरे साथ थी
1: दोस्तों, मैं थी अदिति मौर्या। आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड द्वारा और संयोजन था मनीष सोलंकी का। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

0: सफलता होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Amini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the U.S.'s closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. The 135th episode of the monthly radio program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, Swami Govind Dev Giri Maharaj, today issued a statement on this issue. The statement said, the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in this letter said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation related case based on the SIT's interim report with legal proceedings.

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। और रात 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे संतूर वादक प्रभात मुखोपाध्याय की प्रस्तुति। शाम 7:00 आप आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम चौपाल का और 7:30 पर सीमा डेरी गूंज का। कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:00। रात 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। लीजिए अब सुनिए कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सवेरे 10:55 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10:00 बच्चे सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम चुनमुन।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे जानकारियों से भरा कार्यक्रम नमस्कार। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अर्चना वर्मा, सीनियर साइंटिस्ट काजरी जोधपुर से दिनेश राणेजा की बातचीत। दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुन सकती है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। शाम 5 बजे युवा साथी सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सवेरे 6:45 पर और दोपहर 2:30 पर। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 10:30 और दोपहर 12:30 पर। कल शाम 7 से आप सुनेंगे ICC वीमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थे हमारी कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी व उनका प्रसारण समय। अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम विवरण, प्रस्तुत है देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना देश गान। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार का रिले किया जाएगा।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अन्तिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे एकम एकम इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। सामाजिक अन्तर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्रीमोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन कृत भव्य स्वागतस्य भूरि भूरि प्रशंसा विहिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सेशेल्स देशः हिन्द महासागरे भारतस्य एकः सामुद्रिक सहयोगी दृढः मित्रदेशश्च वर्तते। मोदी अवोचत् यत् सः अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोर्देशयोः दीर्घकालीन सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं नागरिककल्याणाय सहयोगं वर्धयितुं संवादं प्रति आशान्वितो विद्यते। अनेन सहैव तेन विमानपत्तने भारतीय प्रवासी जनसमूहाय अपि हार्दिकं स्वागतार्थं धन्यता वचांसि ज्ञापितानि। गदितं च यत् भारतीय प्रवासीभिः यथा स्व

0: विश्वस्य कस्यापि अर्थव्यवस्थायाः शक्तिः तस्य MSME क्षेत्रस्य योगदाने निहिता अस्ति इति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् न्यगादीत्। अद्य नवदेहल्यां विश्व MSME विंशतिः षड्विंशतेः दिवसावसरे आयोजितम् एकं कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् तेन प्रख्यापितं यत् भारते MSME क्षेत्रं प्रथमतया उद्यमीनां साहसस्य उद्यमशीलताया च प्रतीकं वर्तते। प्रधानमन्त्री संग्रहालय पुस्तकालयेन अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः पीवी नरसिंह रावस्य 50+ जयन्त्यवसरे तस्य जीवनं न्यासं च अभिलक्ष्य एका प्रदर्शनी समायोजिता। अस्याः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं PMML कार्यकारी परिषदः अध्यक्षेण नृपेन्द्र मिश्रेण विहितम्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री संग्रहालये आगन्तुकानां कृते इयं मुक्ता कृता। अस्यां प्रदर्शिन्यां पीवी नरसिंह रावस्य सार्वजनिक जीवनस्य उत्कृष्टायाः यात्रायाः संस्मरणानि, दुर्लभानि च छायाचित्राणि, आधिकारिक प्रपत्राणि, भाषणानि, अभिलेखीय सामग्र्यश्च प्रदर्शिताः सन्ति। अमेरिकायाः कैलिफोर्निया राज्यस्य फुलेटन नगरे प्रवृत्तायां US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य देविका सिहागः, रौनक चौहानः च स्वस्ववर्गेषु विजयम् अवाप्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। फीफा विश्वकप स्पर्धायां मिस्रदेशः ईरान देशेन सह अन्तिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे 1-1 इति अंकैः समता अवाप्य प्रथमतया फीफा विश्वकप स्पर्धायाः नॉकआउट इति चरणे प्रविष्टः। अस्मिन् द्वन्द्वे ईरान देशस्य रामिन रेजाइन क्रीडायाः नायकत्वेन उद्घोषितः। अधुना राउंड ऑफ 32 चरणे तस्य सम्मुखीकरणं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का रिले किया जाएगा।
2: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल, प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026, उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया। श्री शर्मा ने पात्र उद्यमियों को रीको के भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण और सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है। 33 लाख से अधिक MSME के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
3: तो मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित

0: करने का प्रयास हमने किया है पिछले ढाई वर्ष में, वो आपके सामने उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे। एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कामों का सकारात्मक संदेश दिया। राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। एचपीसीएल की ओर से पहले चरण में राज्यभर में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी गई। इसके लिए प्रदेश में 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जहां रिटेल आउटलेट्स के लिए एचपीसीएल 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 31 जुलाई तक इस बारे में नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सरकारी भूमि एचपीसीएल को लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 महीनों में इसका पानी जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और अन्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है, जिससे इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने बताया कि गर्मियों में पेयजल संकट से राहत के लिए 4 अतिरिक्त जलाशयों को भी मंजूरी दी गई थी। फलसूंड जलाशय में पानी भरना शुरू हो चुका है और बाकी जलाशयों में भी जल्द पानी पहुंचेगा।
2: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांव की ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
1: देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवागमन स्थलों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। राज्य के टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉ. रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
3: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं, जहां पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए आज कई स्थानों पर आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा।

0: हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हारमनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की उत्सुकता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 सालों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे फायदा पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके मेहनताने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके तहत कुल 269 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर इन व्यवस्थाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून की गतिविधियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले अब भी तेज गर्मी और उमस के प्रभाव में हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार जताए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। आज 27 जिलों में अंधड़ और बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा जिले के कई जगह तेज बरसात हुई। उधर सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आबूराज में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उधर बालोतरा और सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 29 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिरला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। एचपीसीएल की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की

0: जी सुनिए, इसका आलेख श्रवण शर्मा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण, कृषि, सामाजिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। आइए जानते हैं जिले की बीते माह की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में आज की चिट्ठी में। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन दिनों शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिले की सभी 10 नगर निकायों में ये शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मकानों के पट्टे, नामांतरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। जिले में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जल संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां हुई। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम चूरू के प्रसिद्ध सेठानी के जोहड़े में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान के दौरान जिले में 3,526 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। आयोजन आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष चूरू जिले में 1,624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 177 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जिले में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, चूरू, बीदासर और सुजानगढ़ क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में कमी आई है। कुछ स्थानों पर हालांकि जलभराव की स्थिति बनी, जिसे प्रशासन ने समय पर नियंत्रित किया। बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। जिले के किसान मूंग, मोठ, ग्वार, चवला और बाजरा की बुआई में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 40% बुवाई हो चुकी है। किसान अब अच्छी मॉनसूनी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 300 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा और सहायता से जुड़े मामलों में भी जिले में काम किया जा रहा है। सखी केंद्रों में प्राप्त अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पुलिस थानों में संचालित महिला सहायता प्रकोष्ठों में प्राप्त मामलों का भी निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1,990 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4,990 परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। योजना के माध्यम से कई परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जिले में मुहर्रम का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चूरू शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों ने भिड़ी सेवा में देवनसारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। HPCL का न्यू 400 करोड़ रुपया और निवेश करने राज्य में 309 पेट्रोल पंप खोदया जाए।

0: पहला राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1,32,00,000 टाबरा ने पोलियो खुराक पिलावण रो लगस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवाना 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माथे प्रसारित पहला। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके आज जयपुर में विया राज्य थरा कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण ऐलान करिया। श्री शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 उद्यमियों ने भेड़ी सेवा में देवण सारू रैम्प पोर्टल और ओडीओपी कॉफी टेबल बुक रोई अनावरण करियो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस साल 25 नवा स्टार्टअप्स ने रोकड़ मदद दिया जाऊन रो ऐलान करियो। श्री शर्मा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पात्र उद्यमियों ने रिको जमीरा आवंटन पाने सौंपया। साथ ही न्यारी न्यारी योजनाओं रो फायदो लेवन वाला ने 13 करोड़ रूपयों 32 रकम रा कर्ज और सब्सिडी रा चेक ही दिया। ई मौके बोलता श्री शर्मा कहो कि सरकार उद्यमिता ने बढ़ावो और विनिवेश ने बढ़ावो देवन सारू बरोबर काम कर रही है। वना कहो कि विकसित भारत रा विजन ने साकार करण में एमएसएमई री महत्वपूर्ण भूमिका है। 33,32,000 एमएसएमई रे साथ है राजस्थान देश रो चौथो सबू मोटो राज्य बन गयो है।
1: मुझे गर्व है कि 33,00,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो।
0: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रिया। एमएसएमई दिवस रे मौके राखी जा जलसा में प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार बनावण ने लेर कराया जा रहा कामारो सकारात्मक संदेश दी रिजियो। राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार ने घणो बढ़ाव मिलेला। एचपीसीएल कानियों पहला चरण में राज्यभर में 332 नवा पेट्रोल पंप खोलिया जायेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में आज जयपुर में भी एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रा एहलकारा री मीटिंग में आ जानकारी दी रिजी। इस सारू प्रदेश में 304 ठोड़ा री पिछाण करी जा चुकी है, जठे रिटेल आउटलेट्स सारू एचपीसीएल 400 करोड़ रूपया रो निवेश करेला। 31 जुलाई तई ई बारा में नवी नीति तैयार कर ली जायेला। बैठक में ओई फैसलो ली लीजियो के परियोजना रे तहत सरकारी जमीन ने एचपीसीएल ने लीज माथे मुहैया कराई जायेला, जीणो नुआ पेट्रोल पंप स्थापित कराया जा सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि जोधपुर लिफ्ट केनाल रा तीजा चरण रो काम आखिरी दौर में है। वना आस जताई के आवता 3-4 महीना में इन रो पानी जोधपुर पूग जायेला। आज जोधपुर में मीडिया साथे बतल में श्री शेखावत कहो के ई परियोजना में लंबा बगत चाल री तकनीक और दूजी खामियां ने दूर करी जा है, जीणु इन रो काम तेजियों आगे बढ़ रियो है। श्री शेखावत बतायो के उनाड़ा में पीवण रा पानी री परेशानियों उबरण सारू 4-32 जलाशय री मंजूरी दी रिजी है। वना बतायो के फलसूट जलाशय में पानी भरी जो वे चुक्यो है और बाकी रा जलाशय में बेगा पानी पुगेला। देश ने
2: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट, डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांव की, ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
0: देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण रा मकसदों कालेऊ राष्ट्रीय अभियान चलायो जायला। इनरे तहत 5 साल तय रासगड़ा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जायला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुजब राज्य

0: रसगला सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्र और खासतौर बनाई जा पोलियो बूथा माथे आ दवा पिलाई जाएला। ये दिन खुराक बचोड़ा टाबर ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा दवा पिलावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो कि ई अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और दूजा आवन जावन रिठोड़ा टाबरा ने पोलियो दवा पिलावेला। राज्य रा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि अभियान के तहत प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता टाबरा ने पोलियो की खुराक पिलाउन रो लगस राखी जो है। इस सारू 60,000 पोलियो बूथ बनाई जा है।
1: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने कामयाब और असरदार बनावन सारू आज कई ठोड़ा आशा सहयोगिनिया और नर्सिंग पड़ेसरा जागरूकता रैली निकाली। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। ओ रेडियो मासिक कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला एआईआर न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप माथे करियो जायला। साथ ही एआईआर न्यूज डीडी न्यूज प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पछे क्षेत्रीय भाषा में मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा माथे आज ससेल्स पुग्या। हवाई अड्डा माथे ससेल्स राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वारो स्वागत करियो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहो कि ससेल्स हिंद महासागर में भारत रो महताऊ समुद्री साझेदार और कनेरो दोस्त है। श्री मोदी दोनों देशों रा लोगों रा फायदा सारू भारत और ससेल्स रा लंबी बगतरा संबंध और सहयोग ने बढ़ावा देवन सारू आस जताई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ने आवता 2 साल में देश रा 500 शहर और कस्बा ताई बधाई जायला। भारत टैक्सी रा उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल ने सहकारी हलका में एक क्रांतिकारी कदम बताया। वना कहो कि भारत टैक्सी रो मकसद चालका ने सीधो फायदो पुगार निष्पक्ष और साफ गोई बंदोबस्त पारदर्शी व्यवस्था बनावनो है। वना कहो इनने चालका ने मेहनता नो बत्तो मिलेला और लोगा ने हिफाजती और किफायती यात्रा रो फायदो मिल सकेला।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रो 16 जलसो काले नई दिल्ली में वेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इनरी सदारत करेला। जलसा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा स्वास्थ्य मंत्री सांसद और ठवा एहलकार हिस्सो ले वेला। ई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सतत विकास लगस खाद्य और औषधि सुधार और इनो जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं रा मुद्दा माथे बतड़ी वेला। भारतीय सेनारी दक्षिण पश्चिम कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आज राज्यपाल हरिभाव बागड़े मिलिया। जयपुर माए लोक भवन माए भी ई भेंट माए वना राज्यपालों न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 काले वेला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कान्यू आ परीक्षा ली जायला। इनरे तहत कुल 269 ओदा सारू कामयाब उम्मीदवार ने चुनिया जायला। इम्तिहान ने कामयाब और सुचारू और साफ गोई संचालन सारू सगली तैयारियां कर दीजी है। परीक्षा केन्द्र माथे करीजा बंदोबस्ता ने करडायू लागू करने का निर्देश दीजिया है। राज्य में लाडला कुछ दिनों प्री मानसून री गतिविधियां री सक्रियता बरोबर बनी उड़ी है। वठई आथोनी राजस्थान रा कुछ जिला अजय करड़ी गर्मी

उमसरा फीट माए है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर माए दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह रियो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन माए राजेरा उत्तर पूर्व और दिखनाद हल्का माए आंधी बिरखारी गतिविधियां बनी रेवनरा आसार जताया है। कई जिला माए गरज चमक रह साथ झमाझम बिरखा वह सके है। आज 27 जिला माए अंधड़ और बिरखा रो येलो अलर्ट बताई जो है।

0: बिरखारो येलो अलर्ट बताई जो है। वठे जुलाई रा पहला हफ्ता माए बिरखारी गतिविधियां माए बढ़वारी आस है। ई बीच आज बांसवाड़ा जिला माए कई थोड़ा तेज बिरखा भी वठी ने सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा और आरे सारे रा हल्का माए रिमझिम बिरखावणो मौसम सुहावणो बण्योड़ो है। आबू आज माए चोखी तादाद माए सैलानी पुग्या है। उठी ने बालोतरा और सवाई माधोपुर माए करड़ी गर्मी और उमसू लोग परेशान रिया। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 रा राज्य थरो जलसो 29 जून ने जयपुर माए वेला। स्कूल शिक्षा महकमा कानियों बिरला सभागार माए होने वाला ई कार्यक्रम माए भामाशाह ए प्रेरकान रो सम्मान करो जायला। प्रारंभिक शिक्षा ए पंचायती राज महकमा रा निदेशक सीताराम जाट बतायो के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी जलसा माए भेड़ा वेला। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों ने भेड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। एचपीसीएल कानियों 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नुआ पेट्रोल पंप खोलिया जायला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावर ने पोलियो खुराक पिलाउन रो लगस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माते प्रसारित वेला। मेंद्र साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौद वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनणारा सगळा हेताळू श्रोता आणि घणेमान गुरुविंदर बिश्नोई
1: और चंद्रभान बिश्नोईरा राम राम
0: भाई लोगा बरसात रो टेम है और मेरे महीने चंद्रभान भाई देखो गांव रे महीने चाहे नाडी है पुराणो कोई तालाब है कोई खंदेड़ो है वो पानी भरी जा
1: बिल्कुल और ए अपना परंपरागत जल स्रोत है एक एड़ो भगत हो गुरविंदर जी जद दूर दूर ते आपा देखता नजर दौड़ावता कठई पानी रो कोई ठाव नजर नहीं आवतो उन भगत ए जगह नाडी नाडिया है ए जगह तालाब गांव रे मायने बनियुड़ा है ए गांव रे मिनखारीज नहीं बल्कि जिका पशु है पालतू पशु अपना या पछे रोहिरा जगह जानवर है वाणी भी एक तरह जीवन री आधारशिला ही जीवन री रेखा ही।

0: देखा। और राजस्थान रे मैंने लुगई में मान लो एड़ी लुगई री कोई फोटो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिका में छपती नहीं, तो हीर रे माथे गड़ोर गड़ो लियोड़ी लुगया जावती देखती के ओ है राजस्थान। जल रो अभाव
1: बिल्कुल,
0: पानी री कमी आपानी एक तरह कई आइडेंटिटी ही और मरुस्थल फैलियोड़ो हो
1: जी।
0: लेकिन इंदिरा गांधी नहर आई, उरे साथे साथे विकास री यात्रा भई, बिजली आई, सड़क बनी, तो एकदम लाला 10-20 साल में जीवन स्तर में बदलाव आ गयो। और इन तेज गति रे मायने जीवा में पहला 20 गांव रे मायने एक बेरो होता बारियों तेवता, जिन जिन बारी होती बिन हिसाब बे ऊंठा रूमा ते पखाला में पानी टंकियां लेन जावता। आज हर घर पानी पूग्यो, पानी रो कनेक्शन भी है, हाथे हाथे खुद रे आप रे ट्यूबवेल भी है, तो एकदम पानी री सुविधा इतनी होगी कि हमें पानी री लोग गांव रे मायने और चाहे शहर रे मायने कदरी भूलिया। कई एड़ा मोटा मोटा जलाशय हा, एड़ा तालाब बनियोड़ा हा, इतनी लूठी नाडियां ही जकेरी देख रेख करनी आपा भूली गया।
1: कहवे है कि भाई देखो आउन वालो बगत भी एड़ो आ सके जिको पहला हो, जिन तरह आपां जल रो जिको है अत्यधिक दोहन कर रिया हाँ, आपां जल ने जिको है प्रदूषित भी कर रिया हाँ और अनाप शनाप ढोल भी रिया हाँ। जो देखा के शेरा रे मायने चाहे गाड़ियां धोन री बात वे आपाने कई जगह एड़ी देखो गुरविंदर जी में के जटे पानी री जिकी टूटी है बा चालू ही रहे,
0: टूटी हूँ कहीं लेने देना
1: बिल्कुल।
0: तो देखो आपानी आपाने सोच ने बदलनो पड़े, जल है तो कल है
1: बिल्कुल,
0: और जल सीमित है भाई। कोई आदे कहे के ओहो आपाने हितर पया समुद्री समुद्र है, तो पीऊ नाले पानी री समस्या आउनाले 10-20 साल में बहुत मोटे रूप आवेला।
1: अरे सरकार लगो लग आपने पानी रे संरक्षण री बात करे कि भाई आपने जल संरक्षण करनो चाहिए। जल संरक्षण री गुरविंदर जी कई तरह री विधियां भी है, पर आपा उन पालर पानी री अहमियत जद तई नहीं समझाला, नहीं जद तई आप संरक्षण कानी भी नहीं बदला।
0: देखो पहला पश्चिमी राजस्थान में टांका होता, पछे एकदम पानी री ओपत बढ़िया होगी, इन टांका जुड़ गया, तो सरकार हर पंचायत स्तर माते ढाणी ढाणी टांका खुदाण वास्ते रुपया दिया, अगोर बनवाई। तो आज हमें ओ टेम है कि आपने बनियोडे बिन घर रे टांके रे मैं अगोर माते ध्यान देवा, उरी साफ सफाई करा, और ओ जको पालर पानी है इनसु आपनो टांको भरा। हमें चंद्रमान भाई देखो हेंगारे हो गया पक्का मकान, शहरा रे मायने अगर कोई पक्को मकान बनावे तो उए ने वो एक सर्टिफिकेट देनो पड़े कि भाई मारे डागले माते जीती बरसात रो पानी आई
1: जी,
0: वो मारे में मारे टाके में ले। हकीकत में एड़ो सिस्टम करे कोई कोई, क्योंकि टाके रे मायने तो ही दो टूटी रो पानी आवे
1: बिल्कुल,
0: मोटर ऑन करे न ऑफ करे न बस। लेकिन अगर कोई समझदारी काम ले न आप मान लो मकान बनाओ चाहे गांव में शहर में है नी, और एक लूठो टाको बनाओ
1: जी,
0: और डागले रो पानी हैंग भेड़ो कर उमे भरो, तो साल भर थाने खुद रो भेड़ो करियोड़ो पालर शुद्ध जल मिले और पेट री थाने कोई बीमारी नहीं हुए
1: बिल्कुल। कई बार आप देखता पहला के फ्लोराइड युक्त पानी है तो हड्डिया ने वे नुकसान करते और कई तरह की बीमारियां आपने चर्म रोग संबंधी बीमारी भी भेज आपती। तो आज ओ जी को पालर पानी है इनरी आप अहमियत समझा तो इनरा कई फायदा है, जो आप बतायो के भाई इनु कई तरह की बीमारियां भी कटे। आप देखा तो आप जी को भोजन करा उनने पचाण में भी ओ जी को पालर पानी है वो आपकी घनी अहमियत रखे, तो आपा छतू कर सका आगोरू कर सका और भी कई जगह विधियां है जिनसे आपा पालर पानी रो संग्रहण टांका रे मायने कर सका और आजरी जरूरत भी है।
0: ए जगह भाई आपा ए फिल्टर लावा, तो फिल्टर में लावा न के पहला कहता भाई फिल्टर जो को है ये री हैंग गंदगी साफ, तो हमें कटी है कि भाई हैंग मिनरल कार लेना पानी री उपयोग जो को है वो बेड़ो नहीं रह जाए
1: बिल्कुल।
0: तो अरे भाई ओ जो को नेचुरल बरसात रो पानी है ये में तो नाइट्रोजन को ही आदि की वे इनु इरो आप थे बरसात रो जो को पानी है उए रो स्वाद दूजे पानी रे स्वाद में रात और दिन को अंतर है
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपा पालर पानी माते आपनो जीवन आधारित कर ला तो निश्चित तौर माते आपनी सेहत माते सकारात्मक प्रभाव पड़ी, और आपने इन तरह री मशीन जो को है नी वो पानी पीनो नहीं पड़ेला, क्यों भाई खुद रे बेड़ो करियोड़ो टाके रो पानी है
1: जी।
0: गांव रे महीने पहला लोग नाडिया रो पानी पीता क्यों अब कही ही भाई
1: बिल्कुल
0: तो नाडिया रे पानी रे माइने

0: पशु दनिया तान गाया पैसा ही पी उतीन करतीन उठे कई तरह रा कृतिन जका बे जीव है जके ने आपा पैरासाइट के वहां बाड़ो निकलतो था
1: बिल्कुल
0: हमें बाड़ो समूल रूप राजस्थान आपा खत्म कर दियो कठे कोई बाड़े रो जो कृमि है वो नहीं है। इन वास्ते टावरा ने स्कूलर है माई नहीं जकी है गोलियां है
1: जी
0: देवे।
1: बिल्कुल तो एक कई तरह रा रोग जिका पानी दे वजह वेता आज नहीं है क्योंकि आपानी चिकित्सा जिकी व्यवस्था है उन मायने भी बदलाव आयो है। अरे पानी भी आप जो बात करियो के सहज सुलभ आपने वेग्यो है तो पानी की कीमत आपने समझनी पड़ी और वर्षा जल रो संग्रहण भी करनो पड़ी।

किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: और चंद्रभान भाई देखो कि जटे बहुत मोटी अगोर है या कोई अड़ी सरकारी भूमि है, जटे वन्य जीव है, कटे 10-10, 20-20 किलोमीटर तक फैली हुई है, उठे खंदेड़ा है लोग का मिट्टी काटे, हम वह मिट्टी घर में कटे काम में ले, सब अलग अलग है, लेकिन वे खंदेड़ा ए पानी भरी जा,
1: बिल्कुल
0: और गांव और टाबर इन मौके रे मायने अडीक राखे के ओहो फलाणो खंदेड़ो भरी गयो डुबकी मारा वहां, तो ये रे मायने उ ने ठा नहीं है कि आ मिट्टी कितनी चिकनी है, वो खंदेड़ो कितो गहरो है, तो इन बरसात रे मौसम में गांव रे मायने ए घटनावा भी होए कि टाबर गया खंदेड़े में डूब गया, थोड़ो भाई जका मोट यार टाबर है खास तौर माते 10 साल लेन 20 साल तक रहा, बाणो इन मुजब ध्यान रखो खंदेड़े में जावे तो वे ने रोको, क्योंकि तिरनो तो आवे कोनी और खंदेड़े में जिगिया ही थी वह कोनी, और जे पग पिसल गयो तो थेल गया।
1: तो आ ध्यान माइता ने राखनी पड़ी कि भाई टाबरा ने समझावे कि आपने बरसात रे मौके एड़ी जगह नहीं जानो जते आपने कोई खतरो वे सके। और अब आर देखा गुरुविंदर जी तो गांव रे मायने कई बार एड़ी उमटन आंधी आवे कि उन मायने भी टाबरिया कटे बार खेत में या कटे रह जावे तो बठे भी बांट का दूजा है बे माथे पड़ने डर रहे।
0: और बरसात रे मायने देखो बिजली पड़न ही कई अकाल मौत आवे, पहला तो कही है कि भाई इतो तो संचार री क्रांति ही कोनी, देश दुनिया में कठे ही बिजली गिरती तो उरो इतो तो पतो लाग तो कोनी, हमें एंड्रॉइड फोन है मोबाइल माते आपा देखा के फलानी जिग्या बिजली पड़ी न उठे मीनक दरखत रे नीचे उबो तो मेरे माते उगे बिजली पड़गी, तो ये में भी आप सावधानी रख सको कि भाई बादलिया है न गड़गड़ाहट है न बिजली पड़न रा अंदेशा है, तो भाई आप एड़ी जिग्या मत जाओ जटे के वा बिजली पड़े, खुले में मत जाओ, दरखत रे नीचे मत उबो, आप घर में ही रहो, और हमें तो लोग आज की बिजली पड़े नहीं ये रिवाज थे, एक एंटीनो आवे जको घर ऊपर ही लगा दे, अगर बिजली पड़े तो बाबू एंटीने रे जरिए जमीन रे महीने जावे।
1: तो आ अपने विज्ञान री जी की उन्नति है, आ आपरी जगह बहुत चौकी है, पर आपने भी एक कई सावधानियां है जिकी इन मौके राखनी पड़ी के बरसा रे मायने या आंधी रे मायने आप बिना काम घरों बार नहीं जावा।

0: और देखो थे बात करी विज्ञान री, तो विज्ञान रो मिनखाऊ जुड़ाव लगातार बढ़तो जा रही है। 20 साल पहला ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान तकनीक टेक्नोलॉजी कमी,
1: जी
0: हमें गांव और शहर रे मायने टेक्नोलॉजी हीर की होगी, क्योंकि हर हाथ में वो मोबाइल है,
1: बिल्कुल
0: हर हाथ कंप्यूटरों जुड़ गई, और पूरी देश दुनिया री अच्छी बुरी खबरा ज्ञान विज्ञान सब कुछ आप जरिए मोबाइल अध्ययन कर सको, पढ़ सको हो, चौकी चौकी चीज बनानी सीख सको। तो गांवारे मायने ही छोटा छोटा कई तरह का लघु उद्योग हमें लागन लाग गया। कई बार आप देखा तो आश्चर्य हुए कि
1: जी
0: भाई ओ अटकाई लागे कि साठ फलानी चीज रो उद्योग लागे। पश्चिमी राजस्थान में गणकरा खेता में सोलर री जकी प्लेटा पड़ी है बीघा बीघा में,
1: जी
0: तो ये रो मतलब है कि सौर ऊर्जा रो जो है संकलन हो रही है।
1: बिल्कुल
0: पश्चिमी राजस्थान में भाई जगह कपास होती तो नरमो जो को है वो ठेठ पंजाब भेजता, हमें उएरी साफ सफाई नरुई जो को केंद्र बना दिया,
1: बिल्कुल
0: सेंटर बन गया, तो उठे युवा जगह गांव रा बाने रोजगार भी मिल गयो और मोटो कारखानो भी ला गयो। और तो और जगह एक खाद्य सामग्री है भुजिया है भाई बड़ी है आनी पैकिंग री व्यवस्था भी ग्रामीण क्षेत्र में होन लागी। लाड़ला दिन में एक भुजिया रे पैकेट मात दे कि वो गांव रो एड्रेस लिखेड़ो, और वे रो पैकेट हो जो को राष्ट्रीय स्तर रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर रा भुजिया है बड़ी पैकिंग में, कि देखो भाई हम गांव रा लोग हिम्मत तो करन लाग गया।
1: बिल्कुल लगोलग आ जागरूकता आ रही है, और आ जागरूकता खास तौरों ग्रामीण युवा ने रोजगारों जोड़ रही है। क्योंकि देखो गुरुवेंद्र जी, पहला एक एड़ो बगत हो तो कि गांव रमायने तो भाई कोई काम ही कोनी करा, कहीं गांव रमायने रहे वहां तो भूख मरा। पर आज आ बात नहीं है, अगर थोड़ो मोटो कस्बो है तो बैठे भी जो है होशियार युवा जी को है, आप कने अगर कौशल है तो निश्चित तौरों वो रोजगारों जुड़ सके, और न केवल जुड़ सके, मैं तो कई एड़ा युवा देखा गुरुविंदर जी जिकारी उम्र 22, 23, 24, 25 साल है, पर बे आज गांव रे मायने एड़ा उद्योग लगाया है, एड़ा रोजगार लगाया है के बे 40-50 लोगा ने रोजगार भी दे रिया है।
0: बिल्कुल देखो ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु जका उद्योग लगावे उरे वास्ते सरकार

0: लोन भी देवे, सब्सिडी भी देवे, कई तरह की सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है। जरूरत इन बात रही है कि आप जानकारी ले लगनू मेहनतू वो उद्योग लगावा।
1: बिल्कुल गुरविंदर जी, और अब घड़ी इशारों करे के आज रे चौपाल कार्यक्रम रो बगत फेरियो है पूरो।
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और चंद्रभान बिश्नोई ने दिराओ सीख। राम राम, राम, राम।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: No lobo. Oh, no lobo. No lobo.
1: आग भी क्यों है?
0: होनो ही कोनी।
1: अरे होनी और है मत।
0: डेट खाने आएगी तो ही नहीं होनी देते न बढ़ जाऊँ ना पड़े आड़ा।
1: अरे फाटक दे है देखो।
0: हम्म।
1: हिसाब उठे है जिसको कूटो पीटो करो आ तो देखे थाने तो होगी याद था ना तो हाँ वो कह नहीं कि भाई देखो उड़ारी उड़ी रखूँ कूटियो जो कुछ मैं डोडो हाथ गाल खोल ना और मैं और कौन
0: आऊँ सा आऊँ आऊँ आऊँ
1: कौन
0: हूँ राम राम सा
1: राम राम राम राम पढ़
0: उड़न खटोला में आई मैं उड़तोड़ी
1: अरे गीत दुनिया कई है जो कह नहीं उड़न खटोला होगा भाई ये भाई ओ हो अरे आप नड़ी ओर की
0: ऐसा देखो हमें ओड़की
1: ओ ओड़की ओड़की
0: ओड़की
1: हाँ ओड़की भाई लीलम ओड़की
0: हाँ सर
1: हाँ तो उड़न खटोला में कटूं कोई है जो कह नहीं के धरती में तू उड़ी है कि भागर में तू उड़ी
0: मैं दोनों जगह हूँ समझ लो
1: क्यों
0: हाँ
1: ओ हो कभी देखियो मुखर नेरो जान उड़न खटोलो बात करे
0: विन में तो डर लगे
1: छकड़ा दे किया है इनकोरा के ऊंट गाड़ा दे किया बल्दा गाड़ा दे किया ने गाड़ा दे किया उड़न खटोल ले वो उड़न खटोल में बैठ गए दुनिया कट जाए
0: तो हल्ला हाथे बैठा जाने
1: क्यों क्यों
0: डर
1: मार तो घड़ी बैठोड़ो हूँ तो भाई पर क्या जो नहीं तो छे सकड़ा मार नहीं बैठा नहीं तो हूँ उड़न खटोले में बैठा
0: है ओहो हो
1: पहला मैं तो बकरा ले ले जाओ तो उड़न खटोले में गाल गाल
0: लो
1: अटो माने है जो कहो है कि भाई भरा होता जो को कदी कठिन ये उड़ने जाओ था थे तो इन बात में हंसी मानो कौन कूड़ मानो कहो टापन थे ये है जो को कहो भाई कि उड़न खटोले में तो हूँ मानू कहाँ बैठ सकूँ क्योंकि आजकल देखे काम धंधा कोई कह नहीं आप रख कह सो

0: आज है जो क्या मोटे ओदे माते थे पुगा है
1: हाँ सब रिटायर वेगा सा
0: हाँ
1: हाँ
0: और पर तो देखे लुगी जात रो नाव करियो
1: हाँ सा
0: तो पीटी उषा जी ने कहो है
1: कोटी
0: कोटी बधाई है
1: हाँ सा
0: और भगवान हजरत जरा कैंसर लाल सोरिया नहीं बड़े छोका
1: हाँ
0: खेल खेला हुए
1: सही बात
0: है भाई
1: हाँ सा
0: बड़े
1: बड़े है राहुल देव वर्मन
0: हाँ
1: आज रे दिन 1939 रे जन्म वियो हो ए जका हिंदी फिल्म रे मायने संगीतकार हासा
0: हाँ बाजा बजा है
1: हाँ अने पंचम दार रे नाम हूँ जानी जे
0: ओ हो
1: हाँ सा
0: ऐसा है जो कह नहीं के सिनेमा में बाजा घना
1: गणा बजाया
0: हाँ
1: बजाया हाँ
0: भाई देखे के बंगाल रे नाला है तो बंगाल में तो कह नहीं के भाई के
1: घर घर
0: घर घर
1: संगीत है
0: समझे नहीं
1: सही है
0: तो मोटी बात है तो क्या कहने कहूँ नाम कहो क्या
1: पंचमदा
0: पंचमदा हो गुरु
1: राहुल देव वर्मन
0: हाँ राहुल देव वर्मन
1: हाँ सर
0: तो आने कहूँ है जी कोई कोटि कोटि नमन करा
1: हाँ सर
0: मंदिरेरा फूल चढ़ावा
1: हाँ सर मंदिरेरा फूल चढ़ावा
0: फूल तो आरो कोई बाजू बजेड़ो है नहीं वो सबको गीत लो सुना भाई
1: हुना है तू
0: ना
1: हाँ सर हुना

0: ਬਾਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਗੀਤ ਰੋਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਬਾਤ ਹਾਸੀ ਹੈ ਕਹਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਔਰ ਆਇਆ ਸੋ ਜਹਿ ਕਹਿ ਨੀ ਆਪ ਠੋੜ ਠੋੜ ਮਤ ਜਾਈ ਕੋਈ ਹੁਕ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਖੀ ਨਹਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਈ ਬੜੇ ਕੁਣ ਜਲਮੀਆਨ ਕੁਣ ਫੋਤ ਹੋਇਆ
1: ਸਾ ਆਰ ਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾ वे आज रे दिन 1928 रा जन्म वियो हो और 31 जुलाई 2020 रा फोतवेगा।
0: ओ हो भाई देखा कि जग चावा काम करने वाला मिने खनी
1: हाँ सा
0: क्या कुदरती बात है जो फटकार ले जावे तो कोई कोली भाई सानी
1: सर राजीव गांधी जी ने सरकार रे दौरान एक केंद्रीय गृह सचिव और अरुणाचल प्रदेश रा राज्यपाल रे रूप में कार्य करियो
0: बढ़िया भाई देखा करियो जी कोई चौको और आप चौका कमर पान है जो आई जानी जिया
1: हाँ सर
0: कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है
1: हाँ
0: मंदिर रा फूल चढ़ाओ बड़े
1: पूर्णिमा वर्मन आज रे दिन 1955 रो जन्म वियो हो ए जाल पत्रिका अभिव्यक्ति और अनुभूति रा संपादक है सा।
0: ओ ठीक है आप देखे खबर नवीशा
1: हाँ
0: की बात जी कारदान है बात भली है तो आने कहूँ कोटी कोटी बधाई दा
1: हाँ
0: और भगवान हजरत जरा कह यही है जी को चौकी पोतिया लिखता रहे ना आप खबर लेता रहे
1: बड़े अमला शंकर आज रे दिन 1919 रो जन्म वियो हो ए भारतीय नर्तकी हासा।
0: ओ ठीक ठीक आप कहो क्या डांसर डांसर क्या
1: डांसर डांसर
0: ओ हाँ डांसर है भाई
1: हाँ
0: तो बेहद को चौका कह ली नाच नाचता
1: हाँ
0: तो देखो भाई पद कह नहीं नृत्य कला मोटी लुगई जात में
1: है सा
0: और कुदरत दी तो जरूर कह नहीं बे आप रहा कह के भाई
1: हुनर
0: कहाँ हुनर ने
1: आज मायो और प्रसिद्ध
0: नहंगा ने कह देखा यो तो आने कहो करनो कोटी कोटी बधाई देनी है एक मंदड़े रा फूल चढ़ाओ
1: मंदड़े रा फूल चढ़ाओ
0: वाह भाई मंदड़े रा फूल चढ़ाओ बड़े
1: नितिन मुकेश ए भारतीय गायक है सा और आनो जन्म आज रे दिन 1950 रवियो
0: ओ हो ठीक है जो

0: मुकेश जी का बेटा वेला मारे
1: हाँ सा
0: है
1: हाँ सा
0: मुकेश जी या हूँ मेरी और हो मुकेश जी आ भाई मैं क्या नहीं क्या गेहूं है रंग रहा हाल मैं गम रहा गाना गाना
1: गाना गा होता है
0: भाई है बार
1: बेटा
0: है
1: बेटा
0: ओ ठीक की कौन भाई रूंग जड़ो सोडो है और भाई यार कंट्रोल सो का जीत गया है तो आने कहूँ ऐसे कोटि कोटि बधाई देनी है
1: कोटि कोटि बधाई दे
0: हाँ तो कोटि कोटि बधाई देवा भगवान हजर ताजर आ गया ने और हमें भाई और गए लो कोई गीत लो
1: हाँ सा
0: मनी मारो जीव हो रो जा
1: हाँ सा।

0: वाह भाई, ये हाथों के होकर जो जैसी करनी वैसी भरनी, दिखाली दिनों के की करो तो पर दिन बदिया है जो कह नहीं बारा कह के भाई किन की कोई मैं आना हाज को रिटल ता जी रात रा की करो तो पर दिनों के आ जी बात है तो भड़े कौन है जो कहूंगा भाई
1: अबे फोत भी है जगह में महाराजा रंजीत सिंह
0: अरे पंजाब में होया भाई
1: सही किया सा
0: हाँ पे कह नहीं कह भाई जग सवा महाराजा हाँ
1: बने मुकुट रे मत केवे कोई नूर हो सा
0: हाँ कोई नूर हीरो हो बंदे अंग्रेज देगा
1: हाँ सा
0: वो तो बस लानो ही है जिनको क्या तो लिया या वो इनके लिया ही
1: हाँ
0: बे तो कह नहीं कह भाई सिख पंद्रह मोटा कह नहीं जग चावा महाराजा
1: हाँ
0: और कहनी मिनका ने घने कह हारो दियो तो एड़ा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके पर बाते पोर धोगदा कोटी कोटी नमन करा बड़े
1: सेम मानिक शाह आज रे दिन फोत विया हसा ए 1971 रे भारत पाकिस्तान रे मायने जकी लड़ाई वी ही नी विन मायने भारतीय सेना रे मायने सेना अध्यक्ष
0: अरे भाई नाम ले एड़ा सुरारो मारे कह नहीं जीवड़ो कह के एकदम वो कह के पूछ में आई गो मारे कल फिर बात हूँ देखियो जैसे कहो है कि इंदिरा गांधी हाँ प्रधानमंत्री
1: अच्छा
0: और है जो सेम मानक सा हाँ
1: हाँ सा
0: हाँ ये भाई देखे मिलिट्री रा मटा अफसरा और भारतीय फौज ने है जो कह के पाकिस्तान मैं बाढ़ परी और रातों रात है जिसको क्या दो टुकड़ा करा दिया और 99,000 फौजी यानी 5,000 फौजी बंद है जिसको घुटना टेकाया
1: अच्छा
0: और बार है जिसको जनरल हो जिसको पका पड़ियो और देश कह नहीं के भाई देखे बारे पान है जो कह के
1: गुलामी हूँ आजाद
0: अरे गुलाम के ने भाई वो तो को देखे नाम करियो
1: नाम करियो अच्छी बात
0: ठीक है नहीं
1: अच्छी
0: बात है क्योंकि पड़ोसी थोड़ो खटपटाट घड़ो करतो जगवा क्या कह नहीं अपार भारतीय क्या है क्या फौज मोटी है भाई और जय हिंद की सेना जितना नाम क्या कहना नहीं
1: अरे अलग इस जोश
0: है बात है
1: अच्छी बात है
0: समझा तो ठीक है बाबू मिलिट्री में भर्ती उनको दिया नहीं बाकी हूँ है जिसको दांत तोड़ दे तो हम नहीं था
1: अलग इस जोश है
0: हाँ बात है भाई पढ़ो जब जब झगड़ो हो गए जद भली बासठ वालो हो पैंसठ वालो हो 71 वालो हो 99 वालो हो हूँ है फौजी हाथ रह तो समझिया नहीं
1: सही बात है
0: बात है भाई तो मैंने कहा आरी बात तो मोटी है तो कह के भाई सेम मानक शाह ने कोई नहीं भूल सके आने पर बात पर धोख देवा कोटी कोटी नमन करा
1: हाँ
0: हमें भाई ये नीला मने एक अर्जी होना
1: पड़ी
0: हाँ हुना है दे भाई देखे मार्जी हो रो
1: बेचा अच्छी बात है हुना है दूसरा

0: मन रो घोड़ो डबको चित्रो है जो कह नहीं चितेरियो बोरेगो अर्थे है जो को कह नहीं आज बार है शनिवार
1: शनिवार
0: सो को कह नहीं बढ़िया जिमड़ियो तैयार करो।
1: हाँ सा कड्डी बनाई तू
0: भली बड़ा धर मन में है जो बड़ा
1: हाँ
0: और हूँ है जी को कह दे के फेर दू माड़ा और हमें दे के तारे खासा ऊंचा आई गान अंदाजी पड़गोन ए थे है जी को बेड़ू तैयार कर दो हूँ फिर कह नहीं फटोफट मारी टेमो टेम माड़ा फिर जाई
1: हाँ
0: और हम प्रोग्राम टेम होगो पूरा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, भी आपने सुना कार्यक्रम सीमा ढेरी गूंज, यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोता, आप सुन रहे हैं अजहर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है अरमान मलिक ने, बोल लिखे हैं राश्मि विराग ने, धुन दी है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं, आप सुनेंगे दिल तो बच्चा है जे फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहित चौहान ने, बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने, धुन दी है प्रीतम ने।

दोस्तों, अब आप सुनेंगे छपाक फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन दी है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओ, अब आप सुनेंगे दे दनादन फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मिक्का सिंह और साथियों ने। बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन दी है प्रीतम ने।

श्रोताओ, आप सुनेंगे तेरा सुरूर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने, बोल लिखे हैं समीर ने, धुन दी है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, में आप सुनेंगे छिछोरे फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन दी है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आप सुनेंगे कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है शफ़ाकत अमानत अली, शंकर महादेवन और साथियों ने। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन दी है शंकर एहसान।

श्रोताओं, आप सुनेंगे बिल्लू फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोताओं, आप सुनेंगे बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है बैनी दयाल और हिमानी कपूर ने, धुन दी है सलीम सुलेमान ने।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और उसके बाद News@9 का रिले किया जाएगा।
1: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है।

0: है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के

0: दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने

सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर

0: Bhumi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं सुनेंगे अभिजीत सावंत की आवाज में ये गीत।

0: आज सुबह अखबार में मैंने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा, उसमें लिखा था कि आज मेरी एक सुंदर लड़की से मुलाकात होगी। आई होप सो।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत का आखिरी गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में,

इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम।

0: विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुंचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्य जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जिसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान

0: तूफान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेकर काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान न दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसकी बड़ी कमी थी, और जो 1964 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरिएट थे उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी तो उससे जो

0: पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांव में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जवान से सुनता है कि ये सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक

0: पब्लिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर सकते, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स में काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है।

0: इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहां आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका।

0: अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज की वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेड विनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ विद अस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले संगीत का अखिल भारतीय

कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे संतूर वादक प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुति कुछ ही पलों के बाद।

इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की

0: इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: पेश था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार
3: यह आकाशवाणी।

0: प्रकाश सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता

0: और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister